साथ तादात्म्य साबित करने की क्षमता इस सभी रंगमंचीयता के आवश्यक तत्व है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटककारों ने इन तत्वों का अत्यंत कलात्मक और प्रयोगशील ढंग से उपयोग किया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटकों में यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया। पात्र अब राजाओं और देवताओं के स्थान पर सामान्य मध्यवर्गीय परिवारों से लिए जाने लगे। मोहन रागेश इस युग के ऐसे नाटककार है जिन्होंने हिंदी नाटक को आधुनिक रंगबोध प्रदान किया। उनका नाटक आधे अधूरे स्वातंत्र्योत्तर हिंदी रंगमंच का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस नाटक में एक टूटते हुए मध्यवर्गीय परिवार की कहानी प्रस्तुत की गई है। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगमंचीयता है। सीमित पात्र, एक साधारण घरेलू मंच सज्जा, छोटे और तीखे संवाद तथा पात्रों की मानसिक कुंडा मंच पर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होती है। नाटक में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा आंतरिक तनाव अधिक महत्वपूर्ण है। संवादों की कड़ुता और मौन की गहराई दर्शकों को पात्रों की मानसिक स्थिति से जोड़ देती है। इस प्रकार आधे अधूरे हिंदी रंगमंच में यथार्थवादी रंगमंचीयता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार आषाढ़ का एक दिन में इतिहास और आधुनिक संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। कालिदास और मल्लिका के संबंधों के माध्यम से कलाकार के जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में प्रकृति का अत्यंत प्रभावशाली मंची उपयोग हुआ है। वर्षा, पर्वत, बादल और ग्रामीण वातावरण केवल दृश्य नहीं है बल्कि पात्रों की भावनाओं के प्रतीक बन जाते हैं। प्रकाश और ध्वनि का प्रयोग नाटक की भावनात्मकता को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। मंच पर मौन के क्षण भी संवादों जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार नाटक की रंगमंचीयता उसकी संवेदनात्मक गहराई को बढ़ाती है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक में प्रतीकात्मक और काव्यात्मक रंगमंचीयता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक अंधायुग इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। महाभारत युद्ध के बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित यह नाटक आधुनिक मानव की निराशा, हिंसा और नैतिक पतन को प्रस्तुत करता है। इसकी भाषा अत्यंत काव्यात्मक है और मंच सज्जा प्रतीकात्मक है। नाटक में अंधकार केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक अंधकार का प्रतीक है। प्रकाश और ध्वनि का उपयोग वातावरण निर्माण में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। युद्ध की ध्वनियां, शंखनाद, करुण पुकार और मंद प्रकाश दर्शकों को गहरे मानसिक तनाव की अनुभूति कराते हैं। इस नाटक में कोरस का प्रयोग भी विशेष उल्लेखनीय है। कोरस न केवल घटनाओं का वर्णन करता है बल्कि दर्शकों की संवेदनाओं को भी दिशा देता है। अंधायुग ने हिंदी रंगमंच को एक नई काव्यात्मक और प्रतीकात्मक दृष्टि प्रदान की। आधुनिक रंगमंच ने लोक शैली को अपनाकर नाटकों को अधिक जीवंत और जनसामान्य के निकट बनाया। हबीब तनवीर ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। उनका नाटक चरणदास चोरलोक रंगमंचीयता का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें छत्तीसगढ़ी लोकभाषा, लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक अभिनय शैली का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। मंच सज्जा अत्यंत सरल है किंतु अभिनय और संगीत के कारण नाटक अत्यंत जीवंत बन जाता है। दर्शकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने की शैली लोकनाट्य परंपरा की विशेषता है जिसे हबीब तनवीर ने आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। उनके नाटकों में रंगमंच केवल दृश्य प्रदर्शन नहीं रहता बल्कि वह उत्सव और सामूहिक अनुभव का रूप ले लेता है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी महत्वपूर्ण रूप से व्यक्त हुई। भीष्म साहनी के नाटक इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका नाटक कबीरा खड़ा बाजार में सामाजिक संघर्ष और वैचारिक प्रतिरोध का सशक्त उदाहरण है। कबीर के व्यक्तित्व के माध्यम से धार्मिक आडंबर, सामाजिक विषमता और सत्ता के विरोध को मंच पर प्रस्तुत किया गया है।

0: पूर्ण रही। संगीत अब केवल मनोरंजन के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, बल्कि वो नाटक की संवेदना और वातावरण निर्माण का साधन बन गया। लोकधर्मी नाटकों में ढोल, मंजीरा, बांसुरी और लोक गीतों का प्रयोग दर्शकों को भारतीय सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ता है। वही आधुनिक नाटकों में ध्वनि प्रभावों का प्रयोग तनाव, भय और बेचैनी को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया। उदाहरण के रूप में युद्ध, विस्फोट, मशीनों की आवाज या अचानक चा जाने वाला मौन दर्शकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार संगीत और ध्वनि रंगमंजीदा के सशक्त उपकरण बन गए। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटकों में संवाद शैली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। स्वतंत्रता पूर्व नाटकों में संस्कृत निष्ठ और आलंकारिक भाषा का प्रयोग अधिक होता था, किंतु स्वतंत्रता के बाद संवाद अधिक बोलचाल की भाषा में लिखे जाने लगे। इससे नाटक की मंचीयता और संप्रेषणीयता दोनों बढ़ी। आधुनिक नाटककारों ने भाषा को पात्रों के सामाजिक परिवेश और मानसिक स्थिति के अनुसार ढाला। मध्यवर्गीय पात्रों की भाषा अलग है, ग्रामीण पात्रों की अलग और शिक्षित शहरी वर्ग की अलग। यही कारण है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक अधिक स्वाभाविक और विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी रंगमंच में दर्शकों की भूमिका को भी नए ढंग से देखा गया। पहले दर्शक केवल प्रस्तुति देखने वाला निष्क्रिय व्यक्ति माना जाता था, किंतु आधुनिक रंगमंच ने उसे प्रस्तुति का सहभागी बना दिया। लोकनाट्य परंपरा से प्रेरित होकर कई नाटकों में अभिनेता सीधे दर्शकों से संवाद करते हैं। इससे मंच और दर्शक के बीच की दूरी कम हो जाती है। दर्शक केवल भावुक होकर नाटक नहीं देखता, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचार भी करता है। इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर हिंदी रंगमंच ने दर्शकों की चेतना को सक्रिय बनाने का प्रयास किया। अंततः कहा जा सकता है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटकों की रंगमंचीयता बहुआयामी, प्रयोगशील और जीवन सापेक्ष है।
1: अभी आप अंजना एम की वार्ता सुन रहे थे, स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में रंगमंचीयता। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।

पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। अपि च क्रीडावार्तासु फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरेको देशेन नीदरलैंड दलं पराभूय राउंड ऑफ 16 इत्यत्र प्रवेशम् अवाप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ग्रीस देशस्य यूरो बैंक इति संस्थया भारते सीमापार धन प्रेषणाय यूपीआई आधारित सेवा समारब्धा, येन भारतीय ग्राहकाः अत्यल्प व्ययेन अतीव तीव्र गत्या धनं स्थानान्तरितं कर्तुं शक्नुवन्ति। अयम् अभिनव पदक्षेपः यूरो बैंक संस्थायाः भारतस्य नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यस्य च अन्ताराष्ट्रिय शाखया सह कृतेन रणनीतिक सहयोगेन संभवो।

0: ഇപ്പോൾ സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞ് 49 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ICC വിമൺസ് T20 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് 2026 ലണ്ടനിലെ ഓവലിൽ വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയും വെസ്റ്റിൻഡീസും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം കേൾക്കാം ഡൽഹിയിലെ ന്യൂസ് ഓൺ എയർ ആപ്പിൽ അനന്തപുരി FM പരിപാടികളും.
1: गिर जाए कौन सी रणनीति को आप सपोर्ट करते हैं जब हम बात करते हैं अटैकिंग क्रिकेट के एंगल से?
2: देखिए, ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप पहली बॉल से मारने चलते हैं, 20 ओवर तक मारते चले जाएं। ये क्रिकेट कभी नहीं होती। और पावर प्ले इंडिया का अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद आप ये देखिए, जब 170 रन बनाए, आज हमें लग रहा है कि वो रन कम रहे आपको, लेकिन बता कि 9 ओवर में 100 रन बनाए हम दोनों, ऑस्ट्रेलियंस ने जो मैच जितवाया है, 9 ओवर में 100 रन, ये हर रोज नहीं बनते। 10 रन की एवरेज से ऊपर चेस कर रहे थे वो लोग। 10 रन की एवरेज तो कहीं पे भी चेस करना मुश्किल होता, और खासकर वुमेन्स क्रिकेट में डिपेंड करता है आपकी बॉलिंग कैसी है। आप में जो वीकनेस थी आपकी बॉलिंग में थी, आपके बॉलर सेट नहीं थे। अगर बॉलिंग ठीक ठाक करेंगे तो 170 रन कम नहीं होते हैं चेस करने के लिए। पहले उनके 4-5 विकेट कैसे गिरे थे, और खासकर दोनों जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, इस वजह से मैच जीत गए। बाकी ये है कि आपको 6 ओवर तक आपको डेफिनेट होता है कि आप 40-50 रन का टारगेट रखिए, विकेट्स लूज नहीं करिए। उसके बाद अगले 6-7 ओवर में फिर आप 60-70 रन का टारगेट, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर आप पहली बॉल 2-3 विकेट निकल गई तो आपको जो 180 रन का टारगेट, वो 100-150 रन का टारगेट।
3: राकेश, जैसे हमने देखा इंडिया मैच में जिमीमा खेल रही थी, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट हुई ताकि रिचा आए। क्या आपको लगता है वेस्ट इंडीज, जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव खेलने से नहीं चलेगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट है, क्या हम देख सकते हैं कि भले एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, अगर मान लीजिए वो थोड़ा भी धीमा खेल रहा है, तो कप्तान कहेगा कि आप आ जाइए और दूसरे व्यक्ति को भेज दे?
4: देखिए, वो डिपेंड करता है उस वक्त टीम के जो थिंक टैंक है वो क्या सोच रही है। ये आपके पास एक ऑप्शन है, अब आप उसको एक्सरसाइज करें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूं अटैकिंग दिस थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंख बंद करके बल्ला घुमाना है। मेरा मतलब ये है कि आपको डॉट बॉल्स नहीं छोड़नी है। डॉट बॉल तो क्राइम है। आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, एक ही बल्लेबाज को

0: करने का मौका ना दें आप, उसको बॉलर को प्लान करने ना दें आप, आप चेंज करते रहिए, वो होता है कि आप उनको सेटल नहीं होने दे रहे। ऑस्ट्रेलिया को अनसेटल्ड रखेंगे आप शुरू से, यू हैव टू कीप देम यू नो इन अ सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक नॉट्स में आपको बांध के रखना पड़ेगा उनको कि ये हो क्या रहा है।
1: आशा, कैसे क्रिकेट बदला है? अब राकेश आपको एक डॉट बॉल खेलने से भी मना कर रहे हैं।
0: एक नहीं, मैंने कहा डॉट बॉल्स कम से कम।
2: ये T20 आ गया ना, तब से तो डॉट बॉल मतलब जिसने डॉट बॉल खेली वो क्राइम है।
1: नहीं, पर करेक्ट, पेड़ तो
3: स्ट्राइक रेट, डॉट बॉल बहुत हैवी फोकस में आ जाते हैं, स्ट्राइक रेट भी खास तौर से। ट्रू, इट कम्स इनटू प्ले,
1: बट सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अच्छा है, एक डॉट बॉल पे पेड़ लगता है।
3: गुड पॉइंट अमित, वेल मेड। वेल ओके, इस बात को जारी रखते हैं आगे आशा, बिकॉज अच्छी बात होती है। डॉट बॉल्स की बात हो रही है, जिस तरह के एरा में हम T20 देखते हैं, वहां पे एक तरफ राकेश का पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट बॉल्स हिट करते हैं। वी हैव प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट बॉल्स हिटिंग की स्ट्रैटेजी रखते हैं। मैं मेल क्रिकेट की बात कर रही हूँ, फीमेल में भी अगर बात करें तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं। दूसरी तरफ, हाँ दूसरी तरफ रवि कहते हैं कि फर्स्ट बॉल की हिटिंग अटैक विकेट अटैक मोड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, आप किस तरह की रणनीति को कहती हैं ज्यादा सस्टेनेबल एंड ऑफकोर्स ज्यादा सुलझी हुई रणनीति है कि आप इस तरह के अप्रोच से T20 को अप्रोच करें।
4: सबसे पहले तो सिचुएशन डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं, क्या डिफेंड कर रहे हैं, जो भी वो डिपेंड तो सिचुएशन में करता है सबसे पहले। फिर ऑब्वियसली T20 खेल रहे हैं तो आपको लॉफ्ट ये सब कुछ चीज करनी ही पड़ती है, सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज भी करना पड़ता है आपका गेम। कब आपको, अगर आपको लग रहा है कि सिंगल से बन रहे हैं रन तो आप सिंगल करेंगे, जब आपको लग रहा है कि नहीं है
1: जी। और आशा, आज ऐसा नहीं है कि इंडियन एंगल नहीं है, अभी जब दोनों टीमें बाहर आ रही है, एम्पायर्स आ रहे हैं, तो इंडियन पर्सपेक्टिव भी है वहां पर, हमारे जो अंपायर हैं, मैच रेफरी।
4: अच्छा, वो
3: इंडियन रिप्रेजेंटेशन से आए हुए हैं।
4: राइट राइट राइट।
1: राकेश,
4: और ये हमारे साथ हमारी सीनियर प्लेयर रही हैं, रेलवे से खेली जब मैं, तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे की प्लेयर हैं।
1: थोड़ा उनके बारे में बताइए।
4: ये लक्ष्मी, ये बहुत अच्छी स्विंगर बॉल थी, बहुत अच्छा बॉल करते थे, मतलब इनके साथ मैंने ज्यादा नहीं खेला है, पर जब मैंने रेलवे ज्वाइन करा था तब उनके साथ मैंने एक इंटर रेलवे खेला है अपने नॉर्दर्न से, और ये साउथ सेंट्रल रेलवे में से।
1: और राकेश, पूरा एक इकोसिस्टम ग्रो करता है जब वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ता है, खिलाड़ी के साथ साथ चाहे मैच ऑफिशियल्स हों, सारे अवसर मिलते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए अभी मुझे याद आ रहा था जब हमने होस्ट किया था वर्ल्ड कप विमेंस का, लेट 1997 में आई थिंक, मैं जिस हफ्ता टूर्नामेंट शुरू होना था उस टाइम होता था विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन WCA, उनके पास होटल बुक करने को या उनको एडवांस देने के पैसे नहीं थे, सो दे वेंट टू हीरो एंड उन्होंने कहा कि अंकल हमको कुछ तो पैसे दे दीजिए। तो पवन मुंजाल उनके जो डैड हुआ करते थे, उन्होंने कहा बेटा इनको कुछ पैसे दे दो। तो जो सेक्रेटरी और वो थे, उनको नो पता भी नहीं लगा क्या दिया जाए, एक 50 लाख का चेक दे दिया गया था, अकाउंट नहीं किया गया था, उनका बेटा पहले आप होटल बुक करो। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, WPL आ गया, विमेंस क्रिकेट के विमेन क्रिकेटर्स को लोग पहचान रहे हैं, और ये जो चेंजेस मैंने देखे हैं, मैंने एक ज़माने से मैंने देखा है, शांता रंगास्वामी के टाइम पे जो हम सुना करते थे, डायना एडिल जी, उसके बाद एक न्यू जनरेशन के आए, 90s में अगर आप देखें, late 90s में मिनोती देसाई कैप्टन, इंडियन टीम वॉज डूइंग वेल, एयर इंडिया की टीम अच्छी हुआ करती थी, ये सब। अब आप देखिए, आप लोकल टीम्स या स्टेट टीम भूल गए, अब आप WPL की टीम्स को याद रखें। सो पूरा जैसे आपने कहा इकोसिस्टम चेंज हुआ है, वो तब से हुआ है जब से BCCI आई, और जब से जयशा आए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इक्वल पे, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज मूव। तो उससे जो इंडियन क्रिकेटर्स को जो फायदा हुआ है, उसका फायदा हमें अब मिल रहा है।
3: Right, and just to take this point forward, we're talking of ecosystem over here. The whole spirit of the game, that the visuals that are coming out from the stadium right now, well, surprisingly, and the most beautiful thing is, हमारे सारे listeners के लिए हम आपको बताएं कि सिर्फ Australian support नहीं आया है, huge amount of West Indian support भी आज देखने को मिल रहा है। और रवि, quickly आपसे पूछूंगी, एक बहुत खूबसूरत टीम है जब आपके सामने एक ऐसी दिग्गज टीम हो जो heavy favourites हो, लेकिन support के नाम पे आज इतना ज्यादा West Indian support और crowd turnout हुआ है to support their favourites also.
5: डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना भी चाहिए, अपनी टीम को सब सपोर्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें फेवरेट से खेल रहे हैं, कोई भी खेल रहे हैं। आयरलैंड की टीम ने आपने देखा कैसे सब उनका आए और कैसे इंडियंस को कैसे हरा के गए, होम टीम है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अब बाकी आप थोड़े दिन देखते हैं कि मैच का क्या रिजल्ट
1: जी आता है। आशा, जब ये फ्लैग्स ले आउट करते हैं, गूज़बम्स आते हैं जब राष्ट्रगान होता है तो?
4: बहुत ज्यादा आते हैं।
1: क्या फीलिंग्स?
4: बहुत ज्यादा, मतलब ये बोल नहीं सकते, बयान नहीं होती ये चीजें, ये बस आपका जिस जज्बे से आप खेलते हैं ना इंडिया के लिए, बस वही जज्बा रहता है।
1: आशा को जब इंडिया कैप मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ, तब क्या यादें हैं?
4: वो यादें क्या है ना कि उस समय मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा ऐसा चाव नहीं था कि मतलब क्या होता है, मतलब खेला, रिप्रेजेंट करा, उसके बाद धीरे धीरे लगा कि यार किस मुकाम में हमने इंडिया खेला है। उस समय ऐसा लगता था अच्छा खेला।

0: ठीक है, गुड
1: जी।
0: बस
1: चलिए अंतिम सवाल आप सबसे, राकेश, आज कितने रन बन सकते हैं वेस्ट इंडीज के और कौन जीत रहा है आज, क्या कुछ हो सकता है?
2: मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि 150-160 मैक्सिमम, 8 रन एज एन एवरेज में लेके चल रहा हूँ, एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन।
1: ऑस्ट्रेलिया विल विन। रवि जी,
3: लगता तो ऐसे ही है कि 140-150 बनाएंगे, अगर 180 तक बनाते हैं तो एक मैच अच्छा हो सकता है।
1: आशा जी,
4: मेरा भी यही है, 160-165 तो बनने ही चाहिए, अगर अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा हमें।
1: और बीच वाला जो मैच है राकेश, उसे हम कहते हैं फ्री हिट 20। आपको लगता है नो बॉल होंगे, कुछ फ्री हिट्स भी मिलेंगे?
2: बिल्कुल मिलेंगे।
1: जब फ्री हिट होती है तो बल्लेबाज क्या सोचता है, क्योंकि आप तो राइट हैंडेड टॉप बैटर है,
4: तो वो जो सब सोचते हैं, ऑडियंस सोचती है ना, वही बैट्समैन भी सोचते हैं।
1: लेकिन उसमें स्टंप हो सकते हैं क्या फ्री हिट पे?
4: उसमें रन आउट होता है, केवल
1: स्टंप नहीं हो सकता, सिर्फ रन आउट हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। पर आप क्या सोचते हैं कि छक्का ही मारें कोई भी बॉल आए?
4: हाँ, मतलब उस बॉल में तो सब सिक्स मारने का ही सोचते हैं ना।
1: चलिए, जब फ्री हिट 20 आएगा तो उसमें देखेंगे कितनी नो बॉल हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव आपका और रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।
5: फर्स्ट बॉल 20।
1: For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action.
6: Good evening, and we have reached the business end of this World Cup. The semi-finals, the much-awaited action begins at the Oval. The former champions, Australia and West Indies, who had the 2016 win defeating Australia, but it's been Australia who'd been champions for a very long time. So it's going to be an intense battle between these two sides. And this morning the temperature at the Oval is about 23 degrees Celsius, might reach up to about 27-28, but then well, a look at that pitch really made a statement that it could probably have a variable bounce. The spinners might have some kind of a role to play, and the top surface remains a bit greenish, but underneath that it's going to be a dry surface. And must say that the team that wins the toss, it was almost a foregone conclusion that they will bowl first, and it's Australia bowling first on this particular ground. And just to say this, that when we look at the two sides here, the Australian team has gone completely unchanged, whereas the West Indies side had one change as far as the spinners are concerned. Let me look at the Australian side for the moment right now. Beth Mooney, Georgia Wall, Lynchfield, Elsie Perry, the most experienced cricketer. We'll be looking forward to seeing her again here. And then Ashley Gardner, Georgia Wareham, Annabel Sutherland, Nicola Carey, Sophie Molyneux, the captain, Lucy Hamilton and Kim Garth. So this is the Australian team, and the West Indies team, if I look at, there's been one change. One of the spinners, who was Ashwini Munisar, has been replaced by Karishma Ramharak. And the reason for that is because there are a good number of left-hand batters in the Australian side, and that's the reason why we find that the off-spinner has been introduced. And talking of introduction, let me introduce our senior commentator with us, Sanjay Banerjee, to take you through those few moments of excitement before the first ball is bowled. Hello, Sanjay.
7: Namaskar, Prem, aur bahut bahut namaskar, shrotaon. सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, जहां ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज एक दूसरे के सामने हैं, बहुत बड़ा मुकाबला है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर वो जीतते हैं तो ये उनका सातवां खिताब होगा। वेस्ट इंडीज ने एक खिताब जीता है, वो भी 2016 में, और वो भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे करके वो खिताब जीता था। तो जाहिर है दोनों टीमों के बीच एक अलग तरह की रस्साकशी है, और ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बढ़िया प्रदर्शन यहां देखने को मिलेगा। इलेक्टेड टू फील्ड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अच्छा मौसम है, हवा हल्की है वहां पर, और जहां तक पिच का सवाल है, थोड़ी बहुत ग्रास है, यानी कि अगर आपकी घास है पिच पर तो शुरुआती लम्हों में आप देखेंगे कि कम से कम तेज गेंदबाजों को एक बढ़िया मूवमेंट वहां मिलने वाला है। प्रेम,
6: that's right, Sanjay, and it's a breezy morning, so the cross breeze might just be a factor which will accentuate swing bowling, and the West Indies batters have to be careful. The captain will be there as the opener, the 28-year-old Hayley Matthews. He's a right-handed bat, and she's been in the side for a very long time, and

0: संजय, वंडरफुल फर्स्ट ओवर।
1: बिल्कुल, अगर आप वेस्ट इंडीज के लिहाज से देखें तो एक अच्छा ओवर, और जहां तक शुरुआत का सवाल, तो कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं मिली गेंदों को, ऑन द स्टंप्स फेंका, किसी तरह का बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला शुरुआती ओवर में। हालांकि हवा तेज है वहां पर, किंगार्थ इस समय गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है, दूसरा ओवर है, और मैथ्यूज जो कि सबसे सॉलिड बैटर हैं टीम की, ऑफ स्टंप से टप्पा खाकर थोड़ा सा बाहर की ओर निकली थी, पॉइंट की दिशा में उस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, कोई रन नहीं। अच्छी बात यह कि कोई बहुत जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे वेस्ट इंडीज के ये दोनों बैटर्स, उन्हें पता है कि उन पर कितना दारोमदार है टीम का, और अगर आप इन दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 115 और 116 है। वृंदा राठी भारत की हैं और इस मुकाबले में अंपायरिंग कर रही हैं सेमीफाइनल में, और किम कॉटन है उनके साथ जो कि न्यूजीलैंड की, 8 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा टप्पा खा करके बाहर निकल रही थी, मैथ्यूज ने बल्ला चलाया जरूर था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, किस्मत अच्छी। और एक परेशानी का दृश्य देखने को मिला कुछ समय पहले, जब डियंड्रा डॉटन को तकरीबन 2-3 लोग उठा करके लेकर के जा रहे थे, समझ से परे है कि डॉटन को हुआ क्या, लेकिन एक बहुत अच्छी बैटर है टीम की, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो वापस लौटेंगी। शॉर्ट थर्ड स्लिप, डीप बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार दोनों स्लिप्स के बीच में से गेंद निकलती हुई चली गई 4 रनों के लिए, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: Well, that was a freaky shot on the offside, not intended, but squeezes through the third man region, through the slip cordon, and that was a lucky boundary for the side, almost to the outstretched hands of the fielder, Sanjay, that was close.
1: बिल्कुल नजदीक मामला हो सकता था, और काफी तेज छलांग भी लगाई थी उस गेंद को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, लेकिन संभव नहीं। लेकिन पावर प्ले है, और पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लगातार गेंदों को ऑफ स्टंप पर टप्पा डाल रही और थोड़ा सा बाहर की ओर निकालने की कोशिश, एक हल्का जो स्विंग का मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है गार्थ की गेंदों पर, एक स्लिप बिल्कुल विकेट से सटे हुए, और आप इसे शॉर्ट थर्ड मैन कहें, थोड़ा सा काफी पीछे स्लिप के, और वहीं से उन दोनों के बीच से वो कैच निकलता हुआ। गार्थ ने अब तक 5 रन दिए हैं, वेस्ट इंडीज ने 13 रन बना लिया, अच्छी शुरुआत। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और खासतौर पर मैथ्यूज जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमती हैं तो फिर किसी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर देती हैं। जोसेफ उनका कितना साथ देंगी, 3 गेंदों पर अब तक 1 रन बनाए हैं, मैथ्यूज ने 7 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर ये जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी नहीं तोड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सफर आसान नहीं रहने वाला है। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो अनप्रेडिक्टेबल मानी जा सकती है, हारने के लिए किसी भी कमजोर टीम से हार जाए और हराने के लिए दुनिया की मजबूत टीमों को भी शिकस्त दे दे। हल्के से इस गेम को खेलना चाहती थी, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाई, लेकिन कोई रन नहीं, सुरक्षित अपनी जगह पर। तो इस लिहाज से गार्थ का ये बेहतर ओवर, अच्छा ओवर, कम से कम जो स्टंप्स लाइन की डिलीवरीज लगातार मैथ्यूज के लिए डाली जा रही है, और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में बैटर को बहुत ज्यादा खेलने की आजादी दे देंगे, स्ट्रोक्स की आजादी दे देंगे, तो फिर रन्स बनने की शुरुआत होगी और फिर प्रेशर आप पर पड़ेगा। जोसेफ 1 रन पर, मैथ्यूज 11 पर, ये गेंद, और इस बार मोड़ दिया है, गेंद फिर जा रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद फील कर ली गई। मौका यहां पर रन बनाने का, दौड़ करके 2 रन पूरे किए 15 2 ओवर के बाद।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: The first two overs we've seen the West Indies batters playing with consummaties. They're not in any kind of bother. They are playing with comfort, and I think the Australian bowlers have to now apply themselves and pitch the ball in the right areas. This is more important on a pitch where, you know, the first half you will have to keep the batsmen or the batters guessing and keep them in business. Both Hamilton and Garth have tried their best. Hamilton looking a bit pedestrian today, but Garth did bowl well. But the batters were even cleverer. They overwhelmed and made

0: sure that they took advantage of the ball being slightly short, go back into the crease and play the ball. Here is Molyneux coming in, the captain of the side now, left arm. And that ball comes in with the arm. And the batter was so clever. Matthews, off the back foot, plays it down into backward point. The ball hits the fence, four runs. Ye laga, abha ka choka. Sanjay, what a shot.
1: कमाल के स्ट्रोक्स, और जो भी स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो विकेट के पीछे, आमतौर पर हम देख रहे हैं कि रन्स बन रहे हैं. अभी तक स्ट्रेट नहीं खेला है, वी पर नहीं खेला है.
0: But then that ball was an arm ball, but then going back into the crease and cuts it brutally through the backward point region. Here's Molyneux. Next one, this time she steps and plays it across the line. That ball sure going to the square leg fence. Four runs. ये लगा
1: आभा का चौका. कप्तान का जबरदस्त इस्तकबाल किया, लगातार दो गेंदों पर दो चौके. रफ्तार बहुत नहीं है, 78 के आसपास, और उसका जितना इस्तेमाल किया जा सकता है. बढ़िया शॉट खेला ऑन साइड पर, लगातार दूसरा चौका.
0: Matthews's highest score this World Cup has been 48. She's played all the five matches, averaging 23, strike rate of 97. She has to keep that better. Here's Molyneux bowling in. This is striking a pads outside the leg stump. And I think Matthews is clear in an intent that she is going to strike and make sure she exposes the fielding side in the first six overs and gets all the gaps through and playing in the areas where the fielders are not there on the fence. This time bowling and pushing the batter on the back foot, but she's clever enough to play it across the line to mid-wicket deeper. And there is a fielder outside the 30-yard circle who picks it up. And one more run taken. The strike rotation is very important because you've got a right and a left-hand batter in the center. And this over has seen a couple of boundaries which the captain won't like, Molyneux. And she's now placed a fielder there on the fence at the long on and one at the deep square leg. Rest all inside the 30-yard circle. There is no slip at all. The keeper right up to the stumps. Here's the left-handed Joseph facing the next delivery. Slightly back of the length. Plays it down into mid-on. Crosses over for a single. Takes the score up by one more to 25 for the loss of no wicket. One more delivery to complete the third over. So far, the run rate looks to be pretty healthy. 8.82. We are in the third over. And till the sixth over completes, you can't have more than two fielders outside the 30-yard circle. Here's Molyneux bowling this one outside the off stump, and the batter goes, creates width, plays it down into backward point, well fielded. End of the third over. West Indies 25 for no loss.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है. वेस्ट इंडीज ने अब तक एक भी विकेट गंवाया नहीं. एक अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत आप कह सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसके पास बल्लेबाजों की एक सॉलिड फहरिस्त है. इसके अलावा गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन. 5 के 5 मैचेस जीते उन्होंने. अब वेस्ट इंडीज का वही मिला जुला प्रदर्शन, 2 मैचेस हार गए. इंग्लैंड से हारे चलिए अलग बात थी. यहां अच्छी शुरुआत की कोशिश. गार्थ का दूसरा ओवर, और ये एकदम सेट पैटर्न है ऑस्ट्रेलिया का. शुरुआत में वो अपने दोनों ओवर से, दोनों गेंदबाजों से दो दो ओवर्स करवाते हैं, फिर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है. हल्का सा केवल गेंद को प्लेस किया था, कोई रन नहीं. चौथा ओवर शुरू. मैथ्यूज, आपको याद होगा 2023 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन किया था. एनेबल सदरलैंड को 2 विकेट चाहिए 50 विकेट पूरे करने में T20 इंटरनेशनल में. और इसी तरह से कैंपबेल को 13 रन चाहिए 500 रन बनाने में T20 वर्ल्ड कप के बीच. सॉलिड शुरुआत वेस्ट इंडीज की. पहला सेमीफाइनल विश्व कप का गार्थ, और इस बार अपने स्ट्रोक को चेक किया. काफी धीमी गेंद अपेक्षाकृत, और पहले ऐसा लगा कि जैसे वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया. डॉटिन को किसी तरह की चोट दिखाई दे रही है प्रेम, ऐसा लग रहा है कि उनके कहीं पैर में, मांसपेशियों में खिंचाव है.
0: बट डजंट लुक टू बी वेरी सीरियस बिकॉज वी प्रॉबली हैवंट गॉट एनी अपडेट ऑन हैज दैट बीन एनी सीरियस.

0: because had it been serious, I think there should have been a clear update, Sanjay.
1: बिल्कुल इंतजार है उसका, लेकिन एक अच्छी बल्लेबाज है टीम की और इस बार शॉट खेलना चाहती थी, थोड़ा सा लेट आई स्ट्रोक के ऊपर और इसीलिए कनेक्शन सही मिला नहीं, गेंद को बल्ले के बीचों बीच मेडल किया नहीं, सिर्फ इकलौता रन। मैथ्यूज अब स्ट्राइक लेंगी 20 की व्यक्तिगत रन संख्या के साथ 12 गेंदों के बाद। गार्थ की गेंद सीम के सहारे आमतौर पर टप्पा डालती है और लगातार एक हल्का सा मूवमेंट, पिछला ओवर भी हमने देखा था उनकी गेंदों पर हरकत है और उसका वो पूरा फायदा लेना चाहती हैं। रनों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई, लेकिन इसके बावजूद अभी 7.5 के आसपास का औसत है, एक बेहतर स्थिति कही जा सकती है बशर्ते कि आपने कोई विकेट ना गवाया हो। ये के मिडिल स्टंप पर एकदम स्टंप टू स्टंप अटैक, बिल्कुल आजादी नहीं दे रही है दोनों बैटर्स को और यही वजह है कि वेस्ट इंडीज का स्कोर थोड़ा सा रुक रुक कर बढ़ रहा है। जिस तेजी के साथ शुरुआत हुई थी वो तेजी फिलहाल नदारद है। हालांकि पावर प्ले चल रहा है, पहले 6 ओवर्स में आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, उठा करके खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार स्टंप्स पे अटैक करेंगे तो फिर मुश्किल होता है। और वैसे भी हेली मैथ्यूज बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, खासतौर पर गेंदों को उठा करके खेलने के लिए जानी जाती हैं, आज थोड़ा संभल कर खेलती हुई। कप्तानी की पारी 2023 का मैं जिक्र कर रहा था, 64 गेंदों में 132 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। सिर्फ 2 मैचेस वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं, एक तो विश्व कप का फाइनल। ओहो, इस बार फिर गेंद को थोड़ा सा उन्होंने रोक करके डिलीवर किया कार्थ ने, काफी इंटेलिजेंट बोलिंग आप कह सकते हैं और तमाम खिलाड़ियों ने उसकी दाद दी। बढ़िया गेंदबाजी, अब तक सिर्फ 1 रन इस ओवर में और जब आपके रन नहीं बनते हैं तो बैटर पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। समझ नहीं सकी थी गेंद को क्या करना चाहती हैं, एन वक्त पर किसी तरह से रोकने का प्रयास, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी, हवा में थी लेकिन किस्मत साथ थी कि कोई भी नजदीकी खिलाड़ी वहां पर नहीं था। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, मैथ्यूज 20 पर और जोसेफ खेल रही है 5 पर। वेस्ट इंडीज ने अपना कोई विकेट अब तक गवाया नहीं, 6ठी बार सेमीफाइनल खेल रही है वेस्ट इंडीज की टीम। गार्थ इस ओवर में आखिरी बार, उनकी ये गेंद और इस बार थोड़ी सी शॉट और गेंद को हल्के से केवल खेला स्क्वायर लेग की दिशा में एक लौते रन के लिए, 4 ओवर के बाद 27 बिना नुकसान।
0: So well, we've seen 4 overs 27 without loss and I've seen that last over from Garth, she was able to at least take the pace of the ball and confuse the batter and the captain of the West Indies side, she was a bit surprised in the very fifth delivery where there was a bit of a variable bounce. Lucky she is still on the crease. Just to tell you something interesting, as far as West Indies and Australia are concerned, they have clashed against each other 19 occasions in T20s, whereas 17 occasions Australia has won and just 2 occasions where West Indies have won against them, including the famous 2016 World Cup where West Indies were the champions. So they will have to recreate the scenario. I mean, there is no good or a bad team on a day. It's how you take the opportunity. Here's the first delivery from Hamilton from over the wicket. Bowls in to Matthews. Matthews a little surprised at the way the ball just rushed into her. It was a low bounce and she just plays it down into the bowler who collects it from slightly wide off the pitch there and no runs taken. Fine, wonderful weather at the Oval. England experiencing almost 23-24 degrees with a good amount of breeze, cross breeze, which the bowlers are likely to take advantage of because, as I said, good breeze can really accentuate swing bowling. Here's Hamilton over the wicket, left arm from close to the umpire, bowls, and this time a very high looking shot there, a rash stroke, but lucky the ball fell between 3 fielders almost converging on to the ball. She probably never knew where the ball went. She was trying to play the ball in front of the square on the offside, where the ball gets the toe into the bat and goes up in the air. Very lucky to survive. There were 3 fielders. If that had come into the palms of any one of them, it would have been curtains for Matthews. She had a rush of blood, adrenaline rise there, and that made her play. So we had Ash Gardner who picked up the ball at the fence area, but then that just fell about a couple of feet ahead of her. Here is Hamilton bowling over the wicket, and this time again a shot which was uncontrolled, trying to play slightly more straightish, but gets the inner edge of the bat and goes down into the square leg region, back to the square to be perfect, and no runs taken. Well, Hamilton may not look to be that threatening a bowler, but the left arm Hamilton really has the tricks up her sleeves.

0: अब ऐसे में जब जोसेफ का बल्ला चल नहीं रहा है, जोसेफ चल नहीं पा रही हैं, खेल नहीं पा रही हैं, कप्तान के पास क्या विकल्प है? क्या जोसेफ को अपनी पारी में आक्रामकता और लानी चाहिए? अगर विकेट गिर भी जाए तो इस समय कोई नुकसान नहीं। और ये बड़ा स्ट्रोक, ये बड़ा स्ट्रोक, पहला छक्का जोसेफ के बल्ले से। संभवतः इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत थी। गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के ऊपर से, कोई मौका नहीं।
1: ये लगा आभा का छक्का।
2: वेरी फर्स्ट कॉन्फिडेंस स्ट्रोक ओवर द लॉन्ग ऑन रीजन बिकॉज शी फाउंड दैट इट वॉज इन द स्लॉट एंड नो ग्रेट एफर्ट, very little effort, most best productivity achieved. Sanjay, very good confidence.
0: बढ़िया स्ट्रोक। क्या ये बड़ा स्ट्रोक आपको और एक और बार, ये गेंद टप्पा खाकर के ऊपर जरूर गई थी, दूरी तय नहीं कर पाई, लेकिन दो रन लेने के लिए पर्याप्त मौका। सदरलैंड का ओवर इसके साथ ही समाप्त हुआ। आठ ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 47 पर नुकसान।
2: So well, West Indies, this over had been rather a bit on the aggression mode from Joseph, who went for a big six on the own side to the long on region, and she made sure that she connected the ball well. But what I've seen so far is that this pitch, if you look at the batters getting the ball, they're not really getting it connected on the, to the bat, because sometimes the ball just holds up. And this pitch, as we said earlier, that might just trouble the batters initially. Their timing might slightly get off synchronization. And that's what we have seen. They're trying to play the ball and the ball goes elsewhere. And the connect between the bat and ball really doesn't happen. So it happens in cricket in some of the grounds. And Oval is one such area where we've seen that the team that bowls first, bats second, the win percentage of that side had been rather very, very encouraging. So Australia will be fancying a victory here. I'm just saying fancying, but it all depends on the last delivery bowled. It is Wareham being brought into bowling attack. Six matches, five wickets for her. She comes in and bowls. And bowling! This is the one. She's trying to play that scoop. And the wicket falls. And one gets the wicket of Matthews for the score of 30 of 26.
0: Matthews ka wicket chala gaya. और ये परेशानी का सबब है वेस्ट इंडीज के लिए। मैथ्यूज बेहतर खेल रही थी, जोसेफ नहीं चल पा रही थी। इस बार इस गेंद को आगे बढ़कर के हल्के से केवल प्लेस करना चाहती थी, लेकिन गेंद टप्पा खा करके अंदर की ओर आई और पूरी तरह से लाइन को मिस किया मैथ्यूज ने। पहला विकेट वेस्ट इंडीज का गिरा 47 के स्कोर पर। नवे ओवर में हेले मैथ्यूज 28 गेंदों पर 30 रन बनाकर वारहम का शिकार बनी। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, वारहम लाई गई और आते ही उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली।
2: संजय, इफ यू रिमेंबर व्हेन द इंडियन टॉप ऑर्डर वाज बैटिंग, स्मृति मंदाना, शी ट्राइड टू सिमिलरली प्ले अ स्ट्रोक लाइक दिस व्हेन शी वाज वेरी वेल एंट्रेंच्ड। एंड समटाइम्स व्हेन द बॉल इज राइट ऑन द स्टंप लाइन, इफ यू टेक अ रिस्की शॉट लाइक दिस, वांट टू स्कूप द बॉल और पैडल स्वीप द बॉल, इफ यू मिस इट सर्टेनली इट विल नॉक योर स्टंप्स।
0: बिल्कुल, इस तरह के स्ट्रोक खासतौर पर जब गेंदबाज अपनी शुरुआत कर रहा हो, पहली एक दो गेंदे हो, आपने अगर उनका तीन चार गेंदे या एक ओवर नहीं खेला हो तब रिस्क नहीं लेना चाहिए। कम से कम इस तरह के स्ट्रोक जब आप विकेट खुला छोड़ देते हैं, बल्ला चलता है आपका और अगर टप्पा खा करके वो गेंद आपने मिस की तो फिर विकेट गिरता, और वही हुआ मैथ्यूज के साथ।
2: सो कैम्पबेल कम्स इन, फेसेस द फर्स्ट डिलीवरी, अ लिटिल ऑकवर्ड बट देन स्लाइटली प्लेस ऑन द ऑन साइड। But then I must say that the way Matthews played that last one, she went outside the off-stump line. As here's the next delivery from Wareham, and that's been played onto the onside to the backward square, and that hits the fence for sure, four runs.
1: ये लगा आभा का चौका।
0: बेहतर रणनीति, आपको स्ट्रोक्स की जरूरत है, अन्यथा फील्डर्स आप पर हावी होंगे। थोड़ी सी फ्लाइट कराने की कोशिश थी और बढ़िया स्ट्रोक खेला, फील्डर के नीचे से गेंद निकल गई चार के लिए।
2: Another delivery now outside the off stump, and Campbell, who is a daring batter, she doesn't mind playing those strokes initially. She doesn't take time to settle down, and the way she played that sweep stroke, almost like a slog sweep on the own side, and got a boundary. The next one is defensive. The ninth over underway. Wareham comes and bowls. She's a leg spinner.

0: goes wide outside the off stump. That goes further away and off the back foot, just about plays the ball into the extra cover region. No fielder there, and that's for another boundary. Four runs.
1: ये लगा आभा का चौका।
2: चलिए, विकेट कीपर कैम्बेल ने आने के बाद दो स्ट्रोक्स लगाए हैं, दो चौके लगाए हैं, और वेरहम को जो सफलता मिली थी शुरुआत में, उस सफलता पर थोड़ा सा पानी फेरने में सफलता हासिल की है। लेग ब्रेक गेंदें आ रही हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि कैम्बेल को कोई परेशानी है।
0: Here's the next delivery. That's on the middle and leg stump, and the batter plays it, offering the full face of the bat, and plays it down back into the hands of the bowler. No runs taken. 9 overs gone. A successful over. 55-1 West Indies.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: नए ओवर की शुरुआत। एक विकेट गंवा चुका है वेस्ट इंडीज हैली मैथ्यूज के तौर पर, काफी अनुभवी टीम की कप्तान। 9 ओवर के बाद 55 एक विकेट पर, रनों का औसत थोड़ा सा बढ़ता हुआ 6.11। सदरलैंड की जगह पर गेंद पासी के लिए अब मॉलिन्यू आई हैं। बढ़िया स्ट्रोक गेंद का, ओ हो, लेकिन खिलाड़ी मौजूद था एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीधे हाथों में गया और ये दूसरा विकेट गवा दिया, यानी कि सलामी जोड़ी बाहर हुई वेस्ट इंडीज की। जोसेफ का विकेट भी गिर चुका है।
0: Well, this is once again taking a chance and trying to play across the line. A premeditated stroke went up in the air to the mid-wicket region, straight into the hands of the waiting fielder. Didn't have to do much about it. And a wicket comes in the very next over. So, two consecutive overs and two consecutive wickets. Quite a juice of caught Gardner. Bowled Molyneux. So, Molyneux gets another wicket. And this probably may just set a different run rate once a new batter comes in. Both openers going back to the pavilion.
2: बिल्कुल, प्रेशर अब जबरदस्त होगा क्योंकि आपने दो विकेट भी गंवा दिए, रन्स भी नहीं बने, स्ट्रोक पड़ा था लेकिन शायद फील्ड का तरीके से मुआयना नहीं किया। जहां पर गेंद गई वहां पर बहुत इत्मीनान के साथ वो कैच पकड़ दिया गया, तो दूसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गंवा दिया है। सलामी जोड़ी जा चुकी है, कियाना जोसेफ और हैली मैथ्यूज दोनों इस समय वापस पवेलियन में लौट गई हैं। कैम्बेल आई हैं, अब कैंपेल के बाद कौन आता है खेलने के लिए? डॉटन आज पूरी तरह से फिट नहीं दिखाई दे रही, स्टेफानी टेलर।
0: बट संजय, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इफ द बैटर इज स्ट्रगलिंग एंड गेट्स आउट, अ न्यू बैटर कम्स इन, देयर कुड प्रोबब्ली बी एन इंप्रूवमेंट इन द रन रेट्स।
2: ऐसा लगा था खासतौर पर जब कैंपेल खेलने के लिए आई, दो बड़े स्ट्रोक लगाए उन्होंने, लेकिन एक के बाद एक, दो विकेट गिरने के बाद एक प्रेशर तो अनावश्यक तौर पर उन्होंने ओढ़ ही लिया है, क्योंकि रन भी नहीं बन रहे और दो विकेट भी चले गए। अगर रन्स बनते तो शायद बेहतर स्थिति होती। मॉलिन्यू को यहां पर सफलता मिली और एक अच्छी सफलता। स्टेफानी टेलर आई हैं, क्या बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। 3,666 रन हैं इनके कुल मिलाकर, 90 की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली इस बार। हल्के से ऑफ स्टंप पर मॉलिन्यू का जहां तक सवाल, काफी कसी हुई और अच्छी लेंथ पर गेंदें डालती हैं लगातार। लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदे उनकी, और उसको समझना कम से कम शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, क्या टप्पा लेग स्टंप के बाहर था या टप्पा बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर था और इसीलिए वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़कर के अब 3 हुई है और वेस्ट इंडीज अब तक स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पुराने रिकॉर्ड को देखें, इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए, आधा सफर बीत जाने के बाद अगर आपके स्कोर बोर्ड पर 57 रन है और दो विकेट आपने गंवा दिए हैं तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। मोड़ना चाहती थी बल्ले के मुंह को, उन्होंने मोड़ा जरूर था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद उनके अनुमान से ज्यादा टर्न ली, उछाल था, टप्पा लगा और गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगकर थोड़ी देर हवा में थी, अपनी जगह पर सुरक्षित। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन एन वक्त पर स्ट्रोक को चेक किया। मॉलिन्यू बहुत ही बुद्धिमत्ता से गेंदबाजी डाल रही है, खासतौर पर उनकी लेंथ लगातार परेशान कर रही है कैंबेल को। पिछले ओवर में जब लेग ब्रेक के

0: खिलाफ उन्होंने दो चौके एक के बाद एक लगाए, वही ऑफ ब्रेक के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही हैं। और इस बार स्वीप शॉट खेला था लेकिन गेंद सीधे गई जॉर्जिया वॉल के पास, उन्होंने फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं, दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा। भारत अपना पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार कर एक कड़े मुकाबले में बाहर हुए, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके और इस बार बैकफुट पर गई, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया, 10 के बाद 58 पर 2 वेस्ट इंडीज।
1: सो 10 ओवर्स एंड द रन रेट 5.8 which is certainly not a par score for the moment, because if you have to literally make sure that you get a win here, the par score there should be about 165 plus, to say the least, because Australia is in tremendous form. And Sanjay, if you look at the Australia side, there are 7 all-rounders. You see, that is one of the strengths.
0: Prem, agar aap all-rounders ka zikr karein, to Australia ke paas to 7 all-rounder hain. लेकिन वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ऑलराउंडर्स की अगर आप उस लिहाज से देखें, वो कितने गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे ये आप देखिएगा।
1: वेल आई अंडरस्टैंड दैट, बट द बिग क्वेश्चन हियर इज हाउ इफेक्टिव आर दे, बिकॉज समबडी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, समबडी इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बट इफ यू लुक एट द कैप्टन हरसेल्फ, शी इज अ वंडरफुल ऑलराउंडर, शी इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, शी बैट्स वेल, बॉल्स वेल। एंड कैम्पबेल ऑन 9, टेलर ऑन नो स्कोर, कैम्पबेल फेसेस द नेक्स्ट डिलीवरी व्हिच इज गार्डनर्स फर्स्ट वन, प्लेस इट डाउन ऑन टू द ऑन साइड, the ball picked up there at a deep mid wicket, Annabel Sutherland the fielder, and one more run on the scoreboard. It's going at snail's pace. If you are 59 for 2 at 10.1 overs, well, I think even God can't save you if you score about 120 130, because you have to be there with about 165 170, which now looks like an Herculean task, a precipice to climb. Gardner just one delivery, here she bowling the second one, which is wrapping on the pad, suddenly kept low, and has it got the bat? We'll have to wait and watch, because the players are celebrating. And Taylor walking back. Yes, that's a wicket for sure. Tried to play the ball edge from the bat, leading edge, straight into the hands of the fielder.
0: जब आप दुविधा के शिकार होते हैं तो इस तरह की गलतियां करते हैं। स्ट्रोक खेलें ना खेलें, बैकफुट पर गई, हल्के से मोड़ना चाहती थी, लेकिन एक आसान सा कैच हवा में न तो अपने आप को पोजीशन कर पाई और बल्ले को भी तरीके से गेंद के पीछे नहीं ला पाई, बल्ले का जो सिरा था उससे जाकर के गेंद टकराई और इसीलिए वो जो उसे मोड़ना चाहती थी हाथ से वो मोड़ नहीं पाई। तीसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गवा दिया। स्टेफानी टेलर एक अनुभवी बैटर, वो भी बाहर जाते हुए, वेस्ट इंडीज के लिए अब मुश्किलों का पहाड़।
1: वेल दैट्स रियली मिजरीज कंपाउंडिंग फॉर द वेस्ट इंडीज साइड। Stefani Taylor going back into the pavilion, getting the leading edge, just closing the face of the bat when the ball was slightly on the middle stump. And I was scared that if the ball hadn't got the bat, it would have certainly got her leg before. But then trying to just about turn the ball on the onside across the line, got a leading edge and the ball went an easy catch into the mid-wicket region. And another wicket falls. So now the Australian side must be really gung-ho about it. And their confidence level must have really gone skywards, because they now look to be a very confident side, the Australian team. And we have seen, whether it be the men's side or the women's side, the Australians are always capable of a comeback, however you score against them. Here is Gardner bowling to Claxton, who's a new batter. The first delivery around the wicket, right on the middle and leg, keeping low, and she can't take a chance against her. And the ball played forward in defense, and no run results. But Taylor's, I think, exit would have certainly put enough pressures on the West Indies side. Gardner comes in for the fourth time, this time on the middle and leg. The batter unable to play the ball, as a productive stroke, plays it down into the hands of the fielder in the mid-wicket region, and no runs taken. So all the bowlers look to be wicket-taking bowlers as far as Australia is concerned. The last two deliveries of the 11th over bowls from the corner of the crease. This time the batter steps up. Goodness me, another wicket goes. Trying to play the ball into the cover region. Keeps it up in the sky. And the fielder once again getting a regulation catch right in front of the chest. And wicket number 4 goes. Claxton also going without scoring.
0: गार्डनर ने दूसरा विकेट निकाल लिया इस ओवर के अंदर और उसी जगह पर पकड़ी गई क्लैक्सटन। आगे बढ़कर के स्ट्रोक खेलना चाहती थी, हवा में स्ट्रोक था और उसे कोई गलती नहीं की पकड़ने में। तो अब वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही मुश्किलों का समय। 59 रन पर 4 विकेट गवा दिए।

0: गार्डनर को 2 विकेट मिले, शानदार सफलता।
1: Well, West Indies going from misery to misery, and these 2 wickets are both batters going at no score. Certainly would put a compounding pressure on the West Indies side, whereas the Australians are now looking pretty happy and they're celebrating. And as I was telling you, Sanjay, a little while ago, that all the bowlers look to be wicket-taking, because one of the strengths I find by the bowlers is that they're bowling stump to stump. They're not varying their line or length so much. They're just bowling the right delivery, right on the stump line. If the batter makes a mistake, there you are. So now, a big question, how many more runs before the 20 overs get completed, because we haven't seen the kind of boundaries, except for 1-6 earlier from Joseph. There's not been great batting potential from West Indies.
0: बहुत हैरत में डाला है West Indian ने, अब तक ये आखिरी गेंद है कार्टनर की।
1: Next one, which is outside the off stump, and a bit of bounce collected over the stumps there. Very good over from Gardner. 11 overs gone. West Indies 59 for 4. This run rate is 5.36.
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: ये मत जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: तो अगले ओवर की शुरुआत हो रही है। वेस्ट इंडीज ने अपने 4 बैटर्स गंवा दिए हैं, और शुरुआती अगर बैटर्स इस तरह से चले जाएं कोई बड़ा स्कोर किए बिना, तो प्रेशर नीचे के लिए आता है। शिनेल हेनरी आ रही हैं, और इसकी वजह यह है कि डॉटन आज मैदान के ऊपर अब तक दिखाई नहीं दी हैं। एक दृश्य में हमने देखा था कि वो थोड़ी सी इंजर्ड दिखाई दे रही थी, अब उनकी वापसी होगी या नहीं। पिछली 18 गेंदों में 4 विकेट गिर चुके हैं और रन्स तो नाम मात्र के ही बने हैं। वेरहम 12वें ओवर की पहली गेंद डाल चुकी हैं। हेनरी का जहां तक सवाल, 5 मैचों में 82 रन, स्ट्राइक रेट 137। वेरहम की एक गेंद और इस बार बैकफुट पर जाकर के एक गैप्स तलाशा, 1 रन के लिए अपनी दौड़ पूरी की वहां पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, ये 1 रन और पूरा किया। फॉयबे लिचफील्ड वहां मौजूद थी, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ पहुंच गया है 61 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से रोका। खेल की जो गति है वो तकरीबन वेस्ट इंडियन बैटर्स की वजह से बहुत धीमी होती हुई, न तो रन बन रहे हैं न विकेट सुरक्षित हैं, तो एक ऐसी स्थिति में है जहां से शायद उन्हें उबर पाना कोई आसान काम होगा नहीं। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार भी कोई रन नहीं। गेंद सीधे फील्डर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें इस विश्व कप में, तो दक्षिण अफ्रीका को 65 रन से हराया, बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया, इसके अलावा नेदरलैंड्स को 98 रन से। ये स्ट्रोक खेला वेरहम की गेंद पर कैंपबेल ने 1 रन के लिए। 1-1 रन आ रहे हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान पर 113 रन की शानदार जीत, और उसके बाद भारत को उन्होंने पराजित किया। 3.882 का नेट रन रेट था, और वो तब था जब ज्यादातर टीमों का नेट रन रेट माइनस में था। 12वें ओवर की आखिरी गेंद वेरहम की, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, अब तक 3 डॉट बॉल डाली उन्होंने। रनों का औसत लगातार नीचे जाता हुआ 5.24 पर। तैयार है स्ट्राइक लेने के लिए, फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया, हालांकि गेंद की एकदम जो टर्न थी उसके नीचे नहीं पहुंची थी, गिल्लियां बिखेरी गईं, लेकिन रन यहां पर पूरे हो गए। और इस रन के साथ, हालांकि ऐसा भी लगता है कि शायद बिल्कुल 1 रन दिया गया है, 12 ओवर के बाद स्कोर है वेस्ट इंडीज का 63 पर 4।
5: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस 1 कॉल दूर है।
1: वेस्ट इंडीज इन दायर स्ट्रेट्स 63 for 4, एंड स्कोर शमल सेज दैट इन द लास्ट 3 ओवर्स 12 runs were made. I'm repeating, 12 runs, 4 wickets lost. What a deadly combo of the Australian.

0: इकलौते रन के लिए, रनों की रफ्तार अभी भी तकरीबन धीमी सी बनी हुई, छह के नीचे। स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा 125, और अगर आप वेस्टइंडीज के लो टोटल्स का जिक्र करें तो कई बार उन्होंने गोते लगाए हैं। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 43, 26 में श्रीलंका के खिलाफ 49, और इस बार इंतजार किया, पहले से कमिट हुए, गेम के टप्पे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद टप्पा ऊपर आएगा और उसे वो उलट करके थर्ड मैन की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में निकालेगी, लेकिन जो अंदाज था उतनी गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुआ नहीं, और इसी वजह से चलिए सुरक्षित अपनी जगह पर। डॉट बॉल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 10 ओवर्स में 33 डॉट बॉल थी, 33 डॉट बॉल्स, यानी कि 5.5 ओवर डॉट बॉल से ही खत्म हुए थे, और वो आपके स्कोर में बिल्कुल साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। 71/4 रन रेट, 5.26, ऐसा लगता है कि रन रेट की जो सुई है वो अटक सी गई है, उसमें किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं दे रही है। कैंबल, जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी, आते ही साथ 2 चौके लगाए थे, अब 18 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बना सकी हैं, और इस बार मोड़ने का प्रयास बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कनेक्शन सही मिला नहीं, बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, इकलौता रन सिर्फ मिल गया। तो इस ओवर में अब तक 6 रन बने हैं सदरलैंड के। उस लिहाज से वेस्ट इंडीज के हिसाब से अगर आप कहें तो ये एक बेहतर ओवर आप कह सकते हैं सदरलैंड का। जहां तक सवाल, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, मैथ्यूज इकलौती बैटर जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती थी हेनरी, लेकिन टाइमिंग गड़बड़, गेंद का टप्पा पहले खाया और बल्ला बाद में चला, लेकिन चलिए अपनी जगह पर सुरक्षित। और ये 72/4 14वें ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है सदरलैंड। बड़ा अटपटा सा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेलना चाहती थी, आड़ा बल्ला लगा, एक रन दौड़ करके पूरा किया 14 के बाद 73/4।
1: So well, now what we've seen is 14 overs, 73 for 4, time for drinks in the center, and I'm sure this would certainly give time for the West Indies side to take some change of course. But Sanjay, isn't it quite surprising that the power play saw 35 runs for no loss in just 4 boundaries odd, but now in the next 7 to 14 overs just 38 runs scored. And Shamas Saini says that last 5 overs 18 for 3, 18 runs and 3 wickets. What kind of a pressure was it? Now it looks as if the power play was a much better option.
0: बिल्कुल, लेकिन प्रेम अगर आप देखें तो असली जो प्रेशर है उन्होंने पावर प्ले में ही ले लिया था। अगर आप पावर प्ले में 34-35 रन बनाते हैं, भले ही विकेट ना गिरे, तो ये बताता है कि आपके बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने में। और जोसेफ ने खास तौर पर शुरुआत जिस तरह से की, उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे, कनेक्शन मिला नहीं, तो वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता लगातार दिखाई दे रहा है। और कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो विकेट पर टिक करके एक बड़ी पारी खेल सके।
1: And another thing which I've observed, maybe you have also observed, that the bounce is a bit variable, and that's been keeping the batters completely on a tension mode. And once those first 2 wickets fell, the others looked like as if they were completely strokeless wonders.
0: जी बिल्कुल ठीक बात है प्रेम, और मुझे ये भी लगता है कि क्रिकेट का खेल हो या दुनिया में कोई भी खेल, मैदान पर तो खेला ही जाता है, दिमाग पर ज्यादा खेला जाता है। जब आपके 2 विकेट गिर जाते हैं तो वही जो बाउंस था, जो अब वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वो पहले ठीक दिखाई दे रहा था। मैथ्यूज के स्ट्रोक बड़े शानदार थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रेशर ले लिया। अगर आप दब करके खेलेंगे, बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाएंगे या स्ट्रोक्स नहीं लगाएंगे, तो फील्डर्स को आप न्योता देंगे कि आप उन पर दबाव बनाए।
1: बट लुक एट द अदर थिंग, लुक एट द बोलर्स, दे ऑल्सो बोल्ड वेल। यू सॉ एशली गार्डनर कमिंग विद सम वेरी गुड बॉलिंग। ऑफ कोर्स गार्थ एंड हैमिल्टन स्टार्टेड ऑफ सीमर्स, बट द स्पिनर्स वर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे बोलिंग स्टंप टू स्टंप, बोलिंग द रॉन्ग वंस एंड लेटिंग द बॉल कम ऑन टू द स्टंप लाइन, एंड द बैटर्स दे मेक अ मिस्टेक, एंड मोर ऑफन द नॉट यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द विकेट्स फॉल व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्ले द बॉल अक्रॉस द लाइन।
0: बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि क्रिकेट में, खासतौर पर शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेट में, अगर आप बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बोलिंग करते हैं तो आप बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टंप पर बॉल होती है, आप खींच करके फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते हैं और जरा सी गेंद को मिस करते हैं तो आपका विकेट

0: चला जाता है। तो लगातार अगर आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे, विड्थ नहीं मिलेगी ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर वो स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस बैटर के अंदर नहीं आएगा। और वही कहानी हुई है वेस्ट इंडीज की। और वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि अगर उसका दिन हो तो वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा दे, और नहीं तो दुनिया की किसी भी हल्की से हल्की टीम से भी हार जाए। हमने देखा है दो मैचेस हारे हैं वो इस वर्ल्ड कप के बीच में, किस्मत अच्छी थी जो सेमीफाइनल में पहुंच गए।
1: Ashley Gardner really bowled well. Out of the three overs, she's got 12 dots in that, taken two wickets of six runs. She's the one who literally made that, you know, move to put them under trouble. Here's a first over after drinks, and this is up in the air, goes high in the air. The fielder comes under and grabs this one, and that's Annabel Sutherland. Another wicket falls, just the first delivery after the drinks break, and the fifth wicket goes.
0: Aasan mauka. गेंद के ठीक पीछे थी, स्ट्रेट खेला था, एकदम लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक, वहां से सदरलैंड ने गेंद को फील किया। बढ़िया मौका, और उस मौके को तब्दील किया, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं। और वेस्टइंडीज की पारी अब लगभग धराशायी होती हुई, हेनरी भी 11 गेंदों में 10 रन बनाकर बाहर जा रही है। मुश्किल का समय है, क्या वेस्टइंडीज 125 भी पहुंच पाएगा, 125 का स्कोर भी दे पाएगा? ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बैटिंग है, ये रन्स मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई चुनौती देने वाले हैं।
1: That's right, and I think they've just invited pressure on their shoulders to some very good bowling. I don't think it was extraordinary, but they kept bowling on the stump line and the batters committing mistake. And now I can see the pressure causing them further agony. Why? Because they're stepping out to play and risking their wickets.
0: शुरुआत के लिहाज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बॉल रुक करके आ रही है, और इसलिए जब वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा रहे हैं तो एक तो उन्हें कनेक्शन मिल नहीं रहा है, टाइमिंग सही नहीं हो रही, और गेंद उछल करके इधर उधर जा रही है। ज्यादातर कैचेस हमने देखे पकड़े गए बहुत आसानी के साथ। तो अब करें तो करें क्या, अगर आप हल्के से प्लेस करके रन लेने की कोशिश करेंगे तो एक एक रन से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे तो कैच पकड़ने की उम्मीद है।
1: Being played by Campbell, because they run across for a single and plays it down on the inside, takes a single and takes the score up to 74. And West Indies now looks to be in real dire straits. Absolute 74 for 5 in the 15th over continuing, as here is Molina bowling a slower delivery, and the batter has to literally smash this one, plays it down into the whitish mid-off region, crosses over and takes a single. And now boundaries have become a kind of a precious item. And I'm sure Chama will just now tell me as to how many deliveries since we haven't seen a boundary. That's a very interesting thing. Our score is going to work on that. Here's the next delivery, which is back of the length spot there. And the batter off the back foot just punches down to the whitish mid-off region, picks up a single, easy-looking single. And that takes the score snailing up to at a snail's pace, or cantering up to 76 for the loss of 5 wickets. 15th over, just 2 deliveries more. As here's the next one, that slightly short, plays it across the line, a sweep shot. But there is a superb piece of fielding there at backward square on the inside. The batters have in the meantime crossed over for a couple of runs. And that brings the score to 78 for 5. Nothing exciting about it. I'm sure the coaches, all of them must be really worried as to what should be the score after 20 overs.
0: Kehpana bada mushkil. West Indies bhi shayad uska anumaan nahi laga pa rahe honge. और ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे एकदम सीधे, लेकिन गेंद बल्ले से लगती हुई थोड़ा सा ऑन साइड में गई, डीप में विकेट पर गेंद फील्ड हुई सदरलैंड के हाथों, लेकिन रन वहां पर मिल गया।
1: ऑलराइट, सो वेल संजय, इफ यू लुक एट द लास्ट 3 or 4 ओवर्स, द बैटर्स आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू गेट इवन सिंगल्स एंड टूज, वेयरएवर दे प्लेइंग द बॉल दे गेट द बॉल फील्डेड।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।

0: So he start a fresh over from Wareham, and that ball is in the air, but safe of the fielders there. The ball will hit the fence for 4 runs at the whitish long off region.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: So this boundary, Sanjay, coming after 2 overs.
2: T20 international semi-final mukabla aur 2 over ke baad ek boundary West Indies ke batter se.
0: And that too not very convincing. That ball could have gone into the hands anyway. Wareham comes in over the wicket balls and in the slot played onto the wide-ish mid-off region, straight into the hands of the fielder all along the ground. Campbell, of course, playing on 22 of 24. But it now looks as if even Campbell is not really gelling with the kind of stroke she's known for. Here's the next one. She daringly steps up and oh, that ball. Is that a low catch? We'll have to wait and watch. And the ball has straight gone into the hands of the fielder there. Yes, that's another wicket there. And that ball went as a very low catch, trying to step out and play. Just couldn't get in the middle of the bat, low toe end of the bat. And the catch coming into the whitish mid-off region.
2: एलिस पेरी ने बड़ा बढ़िया कैच पकड़ा नीचे झुकते हुए. तारीफ करनी होगी उनकी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने. और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भले ही कामयाब नहीं थी, लेकिन कैच छोड़ा नहीं. छठा विकेट चला गया वेस्ट इंडीज का. और अब ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज 100 के आंकड़े के लिए स्ट्रगल करता दिखाई देगा. कैम्बल ठीक ठाक खेल रही थी, कुल मिलाकर 22 रन बनाए उन्होंने. शुरुआत अच्छी की, लेकिन बाद के ओवर्स में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दिया. और अब डॉटेन आ रही हैं. डॉटेन आमतौर पर या तो मध्य क्रम में या पारी की शुरुआत करती हैं. एक अच्छी बैटर हैं टीम की. टियान्ड्रा डॉटेन कुल मिलाकर 153 मैचों में 3000 से ज्यादा रन हैं उनके. 14 अर्धशतक, 2 सेंचुरीज लगा चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में. तो ये बताता है डॉटेन का कद क्या है. लेकिन आज मुकाबले से पहले थोड़ी सी चोटिल दिखाई दी, अब लगता है कि रिकवर करके वापस आई है.
0: संजय, अब शायद कहना पड़ेगा कि आप पछताए कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत.
2: बिल्कुल, चिड़िया तो चुग गई है, लेकिन यह अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है.
0: एब्सोल्युटली.
2: और आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते.
0: वेल, डॉट इन कम्स, शी इज इन अ बिट ऑफ अ बॉदर एज वेरम्स फर्स्ट डिलीवरी प्लेज ऑन द ऑफ साइड एंड नो रन्स टेकन. वी अर्लियर सॉ हाउ डॉट इन वाज कैरीड फ्रॉम द मिडल ऑफ द ग्राउंड वेयर शी वाज प्रैक्टिसिंग. दिस वाज नॉट इन द गेम. So here is the next delivery, which is outside the off stump. And once again, just about on the fourth stump, which the batter wanted to convert into a stroke on the offside, moving away from the line of the ball. And no runs taken. We have 6 fielders on the offside, 3 on the on, 4 on the fence, 2 in the V, 1 on the mid-wicket region, 1 on the backward square on the offside. Here's the next delivery, played on the offside. And that ball goes straight into the hands of Molyneux. And a very good chance of a run out goes out of hand for Australia. But I don't think they will mind ever. 16 overs gone. West Indies now 84 for 6.
3: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: तो डॉटेन अब क्रीज पर आ चुकी हैं, लेकिन उनके आने से क्या वेस्ट इंडीज की उम्मीदें वापस जोर मारेंगी? क्या वेस्ट इंडीज इन आखिर के कुछ ओवर्स में, 4 ओवर्स यानी कि 24 गेंदें बाकी हैं, 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन्स बना पाएंगे? क्योंकि अब उनकी पास बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा बाकी नहीं है. ग्लासगो हैं, फ्लेचर, मुनीस, तो जो नीचे के बल्लेबाज हैं वही अब इसके बाद दिखाई देंगे. गार्डनर कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने आज. ये 17वां ओवर डाल रही है डॉटेन के लिए. डॉटेन ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को ड्राइव किया इकलौते रन के लिए. गेंद बल्ले से लगी और डॉटेन ने अपने सफर की शुरुआत की. बहुत ही सॉलिड बैटर और लंबे समय से खेल रही है वेस्ट इंडीज के लिए. 2016 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल के फाइनल में हराया था और उस टीम की 5 लड़कियां इस टीम में भी शामिल हैं. जो तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन उसका आज प्रतिफल दिखा नहीं. इस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया. तो गार्डनर की 2 गेंदों पर 2 रन. वेस्ट इंडीज 86 पर 6, 5.27 का औसत. रनों का औसत 5.25 के आसपास. पूरी तरह से अटक

0: क्या हुआ है, न बढ़ता है न घटता है। और इस बार फिर निकाला मिड विकेट की दिशा में एक रन, ये दूसरे रन के लिए जा रही है, थोड़ा सा जोखिम हो सकता है, लेकिन आपको बिन आखिर के ओवर्स में जोखिम लेना ही होगा। गार्डनर ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी आज की है, अच्छा प्रदर्शन गार्डनर का। अगर आप देखें कुल मिलाकर चौथा ओवर उनका चल रहा है, उनकी इकोनॉमी है 2.86, T20 इंटरनेशनल में 2.86 की इकोनॉमी के साथ दो विकेट लिए हैं गार्डनर ने। तुरुप का पत्ता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। और 17वां ओवर चलता हुआ, ओवल में क्या वेस्ट इंडीज अपने बचाव के लिए आखिर के तीन ओवर्स में आतिशबाजी कर पाएगा, क्या डॉटन का बल्ला चलेगा। और इस बार गेंद पैट्स पर डालने की कोशिश की थी लेकिन अपने शरीर से दूर धकेला, इकलौता रन और। इस एक रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर बढ़ता हुआ अब 90 रन 6 विकेट पर। डॉटन ने अब तक 5 रन बनाए 6 गेंदों से, ग्लासगो ने 4 रन बनाए हैं 4 गेंदों से। और गार्डनर के कोटे की आखिरी गेंद रक्षात्मक तरीके से रोका, एक रन दौड़ करके पूरा किया, 17 के बाद 91 पर 6।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: West Indies is in dire straits and Kamal Sanjay says proudly that, you know, 50 dots have been bowled. So Sanjay, imagine 8.2 overs of dot deliveries, 9 boundaries and a 6. That says the story.
0: बिल्कुल, अगर आप इतनी डॉट बॉल्स डालते हैं, गार्डनर ने देखिए 24 में से 12 डॉट बॉल्स डाली, गार्थ ने 18 में से 9 डॉट बॉल डाली, तो हर बॉलर ने यहां पर अपना काम किया। हैमिल्टन ने 12 में से 7 डॉट बॉल डाली। और क्षमा के साथ साथ हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है प्रदीप कुमार तुम्बड़े, उनकी कलम भी बहुत तेज से चल रही है ये बताने के लिए कि डॉट बॉल्स का हिसाब क्या है।
4: Well, what can Pradeep Tumre do if you don't really get the runs on the scoreboard? Here's the first delivery of a fresh over off the back foot, just tears it down into the back cut point, the ball running to the fence, that's 4 runs.
5: ये लगा आभा का चौका।
4: 10th boundary संजय,
0: अच्छा चौका, थोड़ी सी राहत और उछाल लेती हुई गेंद थी, और उस उछाल लेती हुई गेंद का पूरा फायदा लिया चुके, ऑफ स्टंप से बाहर थी, मौका मिला उसके ठीक पीछे जाते हुए गेंद को केवल खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक डॉटन का।
4: Almost reminds you of Chris Gayle playing the uppercut as here's the next delivery that's played awkwardly on the onside. Didn't get the proper center of the bat there. The ball goes into Sutherland and one more run on the cards. The West Indies team has to literally play out of the skins, and I think if they get about 110 odd runs, 120 maximum, and just about daydreaming on that, I think that would be certainly a score that still not suffice. But the bowlers, as we said, bowling dots. So T20, you don't have to sometimes get wickets. Just keep bowling those dots and the batters are going to come under pressure. Garth runs away, bowls around the wicket to the left-hander. The ball is up in the air. Would that be danger? Yes! Oh, just dropping between two fielders. I almost started thinking it landed to the hands of the fielder. But then two of them almost converging, but the ball drops exactly in center of them at the long off region. It was in the air, it hung in the air for a very, very long time.
0: बिल्कुल, हवा में काफी ऊपर थी और फील्डर्स के पास मौका था बॉल के ठीक नीचे जाने का, लेकिन शायद जिस जगह पर वो मौजूद थी वहां पर उनकी पहुंच से बाहर, और इसीलिए वो कैच तब्दील नहीं हो पाया। एडिस पेरी थी।
4: Perry was there, the experienced fielder, but never mind, as here is Garth coming into bowl, already 7 runs is over, wide outside the leg stump, that's an extra run, should be a wide. So, I don't think they will now really bother about it because they already got the inroads quite well, they have dismissed the top 6 batters, Dottin, whatever she tries, now she can't do something magical to get the score, I don't think more than 120 if I just being very, very optimistic on that. There is no slip there. There is a gully slightly more deeper on the offside, and the batter this time placed

0: you know, below par total we are looking at. Well, 17.4 overs gone, 99 for 6. The run rate hovering around 5.6 for a very long time. There are 6 failures on the off, 4 on the on. The V protected long on, long off, mid wicket, and fielder at the point region. As here's the next delivery outside the off stump, thrashed! And the ball goes into the widest long off region like a bullet for 4 runs.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Very good shot there, moving away from the line of the ball, and a crushing blow to the ball, and the ball just goes super fast, beating the fielder there, and rushes to the widest long offense for 4 runs. Must say, Dutton has really come in and added some kind of a life into the shots there. That is Glasgow, the left-hander, and we see that the number of left-handers in the West Indies side is about 4 of them, as here is Garth coming into bowl. The last delivery of the over, 103 for 6. You got 2 more overs after this. Maybe 120, 125 could be quite optimistic. Now 5 fielders on the off, 4 on the on. Here she bowling in right outside the leg stump, wrapped on the pads. No question about leg before. The ball goes into the point region, picked up there. A single taken in the process. And that ends the 18th over. West Indies 104 for 6. Dutton 11, Glasgow 10.
2: मुझे लगता है कि अब तक का सबसे खर्चीला ओवर कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर में आए हैं कार्थ के. और ऐसा होता है जब आप रन्स बनने लगते हैं तो आमतौर पर जो लंबाई है गेम की दिशा उससे भी भटकाव आता है. 13 रन इससे पहले बने हैं, ओ माफ कीजिएगा, 13 रन इस ओवर में बने हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं. मोलिन्यू और सदरलैंड ने इससे पहले तीसरे और आठवें ओवर में 10-10 रन खर्च किए थे. तो ये 3 ओवर्स ऐसे हैं जो वेस्ट इंडीज के लिए लाभप्रद रहे हैं. लेकिन कहानी ये है कि वेस्ट इंडीज क्या अपने इस टारगेट को डिफेंड कर पाएगा. सामने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उनके जो बैटर्स हैं वो जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं वो सचमुच परेशान करने वाला है, चौंकाने वाला है. भारत की मजबूत टीम को जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी थी, और जितने संतुलित तरीके से खेलते हैं, जिस रणनीति के साथ खेलते हैं, अगर गेंदबाजी करेंगे तो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे. विकेट पर गेंद थी, इस बार गेंद को अपने से दूर धकेला 1 रन के लिए. इसे 1 रन के साथ, बल्कि दूसरा रन भी पूरा कर दिया तेजी के साथ दौड़ते हुए. रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर करने की जरूरत है इस समय. ये आखिर के 1-2 ओवर्स ऐसे होते हैं जब आपको अपना सब कुछ झोंक देना होता है, और आज ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में जो दबाव बनाया है वो डॉट बॉल्स के जरिए बनाया है. पहले से कमिट हो गई थी स्ट्रोक के लिए, और ये देखते हुए मोलिन्यू ने जहां पर खड़ी थी लेग स्टंप के बाहर तकरीबन उस गेंद को रखने की कोशिश की थी, 1 रन दौड़ करके पूरा किया. स्कोर प्रेडिक्टर 120 से 25 की कहानी बता रहा है, और रनों का जो औसत है वो अभी 5.84 है. मोलिन्यू का ये आखिरी ओवर है, 4 गेंदें बाकी हैं उनके इस कोटे की, 2 विकेट उन्हें भी मिले हैं, और इकोनॉमी 6.6 के आसपास. ओ, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और उठा दिया है गेंद को टप्पे के साथ. 4 के लिए भी नहीं जा पाई, ऊंची गई लेकिन टप्पा खाने के बाद ठहर सी गई, और इसीलिए जो शायद उम्मीद थी एक बड़ा सा स्ट्रोक दिखाई दे रहा था वो नहीं बन पाया. 2 रन दौड़ करके पूरे किए. डॉटन का बाद में आना क्या ये परेशानी का सबब था वेस्ट इंडीज के लिए. मोलिन्यू की ये गेंद, और इस बार करारा स्ट्रोक.
0: And this one, the ball goes into the offside to the widest long off region, and one more run taken, and the score moves up to 110 for the loss of 6 wickets. Dutton not in control of the shot, the ball just rolls over on the bat, and the pace of the ball was taken away because the ball rolling over the bat. Lucky there was not a catch in there. Here's Molyneux for the fifth time in this over, and Glasgow steps out in confidence, didn't once again get hold of the ball. The ball goes into the widest long off region. Sutherland picks up, disallowing the second run. The score now moves up to 111 for the loss of 6 wickets. And West Indies in real trouble there. Now, how much can you score in the last? I mean, you just left with 7 more deliveries to go.
2: Aakhri gain ka samna karengi Dutton. Aur is baar Dutton ne nikal diya on side par. Ek aur 4.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Once again,

0: ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए. रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी. गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया. दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू. मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से. अब समाचार विस्तार से. विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा. इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे. श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी. ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है. वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी. राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए. उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे. मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है.
1: भारतीय रेलवे

0: ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना

0: मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

0: दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of

0: Germany suffered a stunning exit after losing 3-4 to Paraguay in a penalty shootout in Boston, USA, following a 1-1 draw. Brazil has also secured their place in the round of 16 with a 2-1 victory over Japan in Houston, USA, late last night. Tonight, Ivory Coast will take on Norway in Texas, United States. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian time. In another encounter, France will take on Sweden late tonight. The match is scheduled to kick off at 2:30 a.m. IST. The Board of Control for Cricket in India has announced a 15-member women's squad for the Asian Games 2026, which will be held in Aichi, Nagoya, Japan, later this year. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living, also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. That is all in the news at 9. Good night.
1: ആകാശവാണി ICC വിമൺസ് T20 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് 2026 ലണ്ടനിലെ ഓവലിൽ വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയും വെസ്റ്റിൻഡീസും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം തുടർന്ന് കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
2: 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने जब विश्व कप जीता था तो पेरी ने विनिंग स्ट्रोक लगाया था, चौका, और वही पेरी आज भी अपनी टीम के साथ यहां मौजूद.
3: As the next delivery, that shot of a length and off the back foot, just plays it across at the onside. The fielder in hot pursuit but can't get to it, and that's a boundary onto the onside to the mid-on region.
4: ये लगा आभा का चौका.
2: तो एक और चौका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर. रनों की रफ्तार में कहीं कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा. मुनी जिस तरह से उनकी निगाहें जमी हुई हैं, कोई भी स्ट्रोक खेलने में उन्हें परेशानी नहीं हो रही. अच्छा खासा तजुर्बा है मुनी के पास और उस तजुर्बे का यहां पर भरपूर लाभ लेते हुए बढ़िया चौका और मुनी पहुंच गई है 15 गेंदों पर 31 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पर. क्लैक्सटन पहली गेंद पर 4 दिया, दूसरी गेंद पर 4 दिया और यह तीसरी गेंद क्लैक्सटन की, लेकिन चलिए वहां पर फील्डर मौजूद थी और इसलिए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई. क्लैक्सटन का यह पहला ओवर है. अब तक अगर आप देखें तो 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. हेनरी है, मैथ्यूज हैं, रमार्क हैं और इसके अलावा क्लैक्सटन. और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है, ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की. ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद और जब आप इतनी विड देंगी तो ये 4 लगेगा. बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए.
4: ये लगा आभा का चौका.
2: ऑस्ट्रेलिया अब 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर. गेंद का इंतजार किया, बहुत ज्यादा विड दी थी प्रेम.
3: वेरी क्लेवरली पुट्स इट अक्रॉस एंड यूजेस द पेस ऑफ द बॉल देयर एंड एक्सटेंड्स द बैट टू हर लेफ्ट फार अवे फ्रॉम द बॉडी, इन कंट्रोल ऑफ द शॉट एंड जस्ट प्लेस इट वेरी लेट एंड द बॉल स्क्वीजेस थ्रू द गैप. दैट इज अ वेरी वेल प्लेस्ड शॉट.
2: क्लैक्सटन काफी खर्चीली साबित हो रही है. अब तक 3 चौके दे दिए उन्होंने इस ओवर में. ताहे हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा में. हालांकि ये 2 रन बनेंगे वहां पर जब तक गेंद वापस पहुंचती, तो कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च कर चुकी हैं क्लैक्सटन अपने इस पहले ओवर में. और ये विकल्पहीनता की स्थिति है. क्या कप्तान अगले ओवर में फिर क्लैक्सटन का इस्तेमाल करेंगी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करेंगी? उनके पास विकल्प हैं, लेकिन वो विकल्प कितने कारगर साबित होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी तब जबकि आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है, सिर्फ 67.

0: चाहिए 85 गेंदे बाकी, बार बार विट दे रही हैं और उसका बहुत सही इस्तेमाल गैप्स का। एक और चार,
1: ये लगा आभा का चौका।
2: So six was gone, 63 for 2, drinks on the field, but misery for the West Indies side. One must say that 18 runs of the last over from Claxton, who bowled a first over in this tournament, and she was nowhere in the line of length, and the batters prevailed, and Mooney obviously making sure that she tormented the bowlers, pulverized the bowling attack. And Sanjay, something very interesting, the two most dangerous batters are on the field right now for Australia. You got Perry, who's got a strike rate of 140 plus, and you have got Mooney, who's got a strike rate of 137 plus. Both of them, Perry had two half centuries and Mooney had one half century this particular series, so they are in a perfect mode to strike, and why not?
0: बिल्कुल, खास तौर पर एलिस पेरी का अगर आप जिक्र करें, और मूनी, ये दोनों काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बेथ मूनी अपना 124वां मैच खेल रही हैं और एलिस पेरी 180वां मैच खेल रही हैं, तो ये बताता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों में आप शामिल करना चाहें तो ये प्लेयर्स निश्चित तौर पर हैं, और ये दोनों सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और अपना अनुभव जिस तरह से प्रदर्शित करती हैं और उस अनुभव का जिस तरह से अपनी टीम को लाभ देती हैं, वो भी सचमुच काबिले तारीफ है।
2: एंड समटाइम्स आई वंडर आर वी मैच वाचिंग द सेम मैच ऑन द सेम फील्ड, बिकॉज़ द ऑन द सेम वेरी ग्राउंड वेस्ट इंडीज वर स्ट्रगलिंग एंड यू फाइंड दीज टू बैटर्स मूनी एंड फेरी प्लेइंग ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, बोनाफाइडी स्ट्रोक्स।
0: बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक टीम की जगह पर एक मशीन कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उनके बैटर्स, उनके बोलर्स सब अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मशीन की तरह खेलते हैं, चाहे मुकाबला कोई भी हो। आप पांच के पांचों मैचेस लीग दौर के देख लें और उसके बाद ये छठा मुकाबला भी तकरीबन उसी तर्ज पर चलता
2: हो। एब्सोल्युटली, आई मीन नो अदर फैक्टर कैन रियली रीडिफाइन द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड शमा सैनी सेज दैट इन ऑस्ट्रेलिया 63 फॉर 2, इट्स गॉट 9 बाउंड्रीज, 36 रन्स ऑफ फोर्स एंड अ सिक्स, सो यू कैन इमेजिन that 42 runs of this has come through boundaries and a six, out of which just about 11 dot deliveries. That is the way the batters have batted, playing some authentic cricket. They haven't played more often than not across the line. They have selected the right shot, maybe over the 30-yard fielders, or picked up the gap well and played with a certain level of accuracy and commitment.
0: Nisandeh, tareef karni hogi Australia ki. Ab dekhna hoga ke final mein kaun pahunchta hai, Dakshin Afrika ya England. और उन दोनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। 2010 पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद सातवीं बार वर्ल्ड कप जीतेंगे अगर ये टूर्नामेंट को जीतते हैं, खिताब जीतते हैं। और तमाम जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हैं सब में वो सेमीफाइनल में पहुंचे, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन का उनका सिलसिला जारी।
2: एंड इफ इंग्लैंड विंस, आई एम सेइंग अज्यूमिंग, then it will be another women's ashes repetition. And if South Africa comes in and they play against Australia, Australia has already defeated South Africa once in this tournament, being from the same group. So one must say that it's going to be a contest either way. But England has really done well for itself this entire tournament. And if England and Australia clash, I'm sure going to be a marquee kind of a match in the final. It's going to be a great crowd catcher. So 6 matches, 8 wickets for Elia Eleni. And she's coming into bowl. Wonder what she'd be doing. She's a seam bowler. Over the wicket, right arm. Balls. Short of her length. Width of her. Good fielding. Saves the blushes at the backward point region. Else that ball would have gone for a wonderful boundary of the backward point region. So much of width offered outside the off stump. The batter was almost prompted to go away from the line and play a hard shot, but well picked up there at backward point. So while this conflict goes on, so the halfway mark has been reached as the next delivery. Once again, the fielder there is Stefani Taylor at the backward point region and picks up no runs taken. We are 63 for 2 and Shama just reminds me that it's halfway through. Another 63 more runs and that will take them to the finals once more. But the West Indies will have to do something really out of the skins if they have to bring in some kind of positivity, which now looks slightly diminishing with each run scored, as here is Alan.

0: Australia looking confident. They have maintained the momentum. They're making sure that they move in a very structured way. They don't have to commit harakiri. They don't have to manufacture a stroke or play indiscreet cricket. They just have to pace their innings properly and they will cross over that 125. Here is Alinne bowling in the next one. And this time she once again bowls a slow delivery and the batter very unable to strike. And what a wonderful over so far. The best of the overs from West Indies, Alinne. Five dot deliveries. And if this is a dot, I think this should be the first maiden over of the match. We haven't seen a maiden over and a T20 to have a maiden over. Obviously not at this time because the option is not to bowl a maiden over. You have to get a wicket. That's more important. Alinne comes into ball. Over the wicket to the right-handed Perry, who's on one of six balls of next the last delivery. And this time she drives and gets a single. So the last delivery gets a single. Obviously not a maiden over. And that takes the score up to 64 for 2 after 7 overs, Australia.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: ये मत जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7. तुम
4: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64 for 2. ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः पेरी को और गार्टनर ने उनकी जगह ली है. फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी में. फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट. बेहतर इकोनॉमी, लेकिन आज उस इकोनॉमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं. इस पर ऑफ स्टंप पर टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट. हेनरी जब तक गेंद को फील्ड करती दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया. और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है. पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलिने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही. सिर्फ इकलौता रन बना था, वो भी आखिरी गेंद पर. अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलिने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था, तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा. उनकी जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए. 66 for 2 फ्लेचर को लगाया गया है. फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है लेने के बाद. फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ बॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली. कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की, लेकिन कामयाब नहीं. एक रन लेने से नहीं रोक सकी. इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67 विकेट पर. पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था. फ्लेचर पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने. पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से. लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेंद को खेलना चाहती थी. वाइड का इशारा आना चाहिए, आया. एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए 76 गेंदों पर. फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास. लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी, तो वो परेशानी का सबब. पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया.

0: बल्कि एक नहीं दो रन जब तक गेम फील्ड होकर के आती, काफी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफी कॉन्फिडेंट बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोई परेशानी नहीं, और हल्के से केवल गेम को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिलाकर के, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
1: 71 for 2 and 7.4 overs. Fletcher, who's got 4 wickets from 5 matches. But for the moment, the objective is to keep the batters silenced. You got Gardner, 4 matches and 112 runs. Strike rate being 169.6. So another batter with a very, very devastating kind of a strike rate.
0: So Fletcher, up to kul milakar 7 रन दे चुकी उनकी ये गेंद। इस बार फिर फ्लाइट कराने की कोशिश, हल्का सा शफल किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला इकलौता रन। हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है। 105वां मैच अपना खेल रही है गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती है। 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ, 29 गेंदों पर वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। रकवत पर कहीं इस बार गेंद को मोड़ा इकलौते रन के लिए। 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद 73-2 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है, और अब सिर्फ 53 रन चाहिए 72 गेंदों से। गार्डनर 4 रन पर, मूनी खेल रही है एक अच्छी पारी, 45 पर पहुंच गई है मूनी, और ये स्कोर उन्हें निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट था और थोड़ी सी ओवर पिच थी। ड्राइव किया था गेम को, लेकिन कैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे प्लेयर के पास कोई रन नहीं।
1: 73 for 2 and they're cruising except for that one over which almost went as a maiden. Perry was playing those 5 deliveries as dot ball, and thereafter, immediately after that over, she went back. She was uncomfortable. Some minor niggle around, as here is Ellen coming into bowl over the wicket. Straight run up and balls outside the leg stump delivery. The batter wasn't in control of that one, but plays it down onto the own side and crosses over for a single. Mooney goes up to 46. Should he get she get 4 more runs, this should be her second half century this World Cup. Well, one must say that she's been a very consistent batter with 138 almost as a strike rate, which is very encouraging. So now Australia need 52 of 70 deliveries, which looks very, very simple when you do the reverse countdown with 8 wickets in hand. So that should be a very positive motivation for the Australians, who went on very competitive in this match. As here is Ellen coming into bowl, third delivery over the wicket. And that's width offered, and the batter of the back foot plays it down into the back foot point region. The ball rushing to the fence, cruising past the field of 4 runs.
3: ये लगा आभा का चौका,
0: बिल्कुल परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेंद के ठीक पीछे गई और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला सीधे 4 रनों के लिए।
1: What a well placed shot that was, almost perpendicular to the pitch. And Ellen couldn't believe it. Obviously, if you offer this kind of a width, who's going to spare you? That was almost like a hit me delivery. As here is she running in away from us over the wicket. Almost a slow delivery in the slot, but the batter wasn't able to cross the fielder there at wide-ish long off region. Picked up there, but in the process, they have scrambled for a single. Glasgow tried every bit of her effort to save the single, but just couldn't do that because the non-striker had already called for the shot, the run there, because she was running...

0: The striker was running to the danger end, so the call was absolutely well calibrated and a single taken. So Beth Mooney on 46, and those four runs will take her to the score of a half century. A highest score this season had been 74, not out. As here is the next delivery, which is right outside the off stump, plays it down into backward of point. The ball picked up there, and no runs taken. The fielder there was Karishma Ramharak, who has been brought in this match in place of Ashwini Munisar. Of course, she couldn't do much with the ball. As here is the last delivery of the over, 79 for 2. Australia need 47 more runs of 67 deliveries. As Ellen comes in and bowls the last delivery, wide outside the leg stump. The wicketkeeper misses. That's wide, and that's going to be 5 runs unless it's picked up. Yes, it's picked up. So that's 2 runs, but then a wide. That was a completely offline, rank bad delivery. The keeper misses, and lucky that the fielder was out there, and no boundary was scored. But it doesn't matter for Australia, because they are not in a great hurry. Of course, they want to complete the process as soon as possible, not linger on, and take it on to the 20th over. 81 for 2 after 8.5 overs. Need 45 runs from 67 deliveries. Last delivery, slowed one, slower delivery, strikes into the wide-ish mid-off, and Gardner couldn't cross the fielder. So, dot delivery, 7 runs of the over, 81 for 2 after 9 overs, Australia.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: ये मत जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
4: दसवें ओवर की पहली गेंद ही वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर. फ्लेचर जिस गति से गेंद में करती हैं, उस गति के हिसाब से उन्हें गेंद पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए. लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद डाल दी फ्लेचर ने, और इत्मीनान के साथ वहां पर एक अतिरिक्त रन जुटा दिया. जहां तक मूनी का सवाल है, मूनी ने आज अपने 3700 रन पूरे किए हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान बैटिंग जो उनका लाइनअप है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. फ्लेचर की गेंद और इस बार स्टंप पर लेकर के आई. गार्डनर ने हल्का सा केवल अपने पल्ले भर से लगने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया. 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ऑस्ट्रेलिया को अभी 43 रन की जरूरत है और 65 गेंदें बाकी हैं. T20 क्रिकेट में इससे आसान स्थिति और कुछ हो नहीं सकती. इस बार कदमों का इस्तेमाल गार्डनर का, और गेंद सीधे 6 रनों के लिए. एक
5: ये लगा आभा का छक्का.
0: A great shot and great confidence oozing, and played that shot with consummate ease. As the delivery was bold, she was anticipating, stepped out, the footwork was important, picked up on a half volley, and just about timed it well over the long on region.
4: तो बढ़िया स्ट्रोक और एक बड़ा सिक्सर. आज मैच में बहुत ज्यादा सिक्सर देखने को नहीं मिले. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा या ज्यादा से ज्यादा तीसरा छक्का होगा. क्षमा इस समय बिल्कुल ये दूसरा सिक्सर था ऑस्ट्रेलिया की ओर से. एक छक्का वेस्ट इंडीज की ओर से लगा था, तो कुल मिलाकर 3 सिक्सेस. दसवां ओवर चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 89 हो गया है, यानी कि 90 की तहलीज पर. कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइट गेंद, और एक बार फिर टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर.
5: ये लगा आभा का चौका.
0: What a graceful inside-out shot, Sanjay. Picked up that length beautifully and played that with consummate ease. Just steps away from the line of the ball and that confident-looking inside-out shot.
4: ऑफ स्टंप के बाहर लगातार विकेट ली है फ्लेचर ने और उसका भरपूर इस्तेमाल किया है।

गार्डनर ने, गार्डनर अब 9 गेंदों पर 19 रन बना चुकी हैं। एक बार फिर फ्लाइट, लगातार फ्लाइट करा रही, लेकिन अगर आप स्टंप पर फ्लाइट कराएं तो चलिए उसको रोकने में आपको मदद मिलेगी। हल्का सा केवल पुश था इकलौते रन के लिए, हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, लेकिन एक शानदार छक्का और उसके बाद एक बाउंड्री ओवर में आई है फ्लेचर की, तो काफी खर्चीला ओवर फ्लेचर का अब तक। 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें बाकी, सिर्फ 35 रन की दरकार। गार्डनर पहुंच गई 20 पर और मुनी अपने अर्धशतक की दहलीज पर, 46 रन बना चुकी हैं मुनी पर। शफल किया और हल्के से केवल गेंद को मोड़ दिया, 1 रन लेना चाहती थी लेकिन दूसरे रन का भी मौका दिखा और उस मौके को उन्होंने तुरंत अपने हक में कन्वर्ट किया। बढ़िया दूसरा रन, दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकेट के बीच में। इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 96 2 विकेट के नुकसान पर, 100 रनों की दहलीज पर पहुंच रहा है और 126 रन बनाने ऑस्ट्रेलिया को, इकलौता रन। और ये आखिरी गेम थी, 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया अब 97 पे 2।

0: Yielded 40 runs of 26 deliveries. And both these are still going strong. They played some very authentic, bona fide cricket, not making any obvious errors. They're selecting the right shots. The next delivery, which is bowled short, and a bit of bounce onto that one, shoulder height, and the right-handed Gardner plays it down into Joseph, standing there at short fine leg, picks up a single to end up the 11th over. Australia now 105 for the loss of 2 wickets. Mooney 55, Gardner 22.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
5: 12वें ओवर की अब शुरुआत हो रही है और गार्टनर 22, मूनी 55, दोनों सॉलिड तरीके से इस विकेट पर अब टिके हुए हैं. कोई ऐसा लगता नहीं कि अब मुश्किलों का दौर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए. मुकाबला तकरीबन फाइनल में दस्तक देने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया. और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, पैरों पर गेंद थी स्क्वायर लेग की दिशा में और जब तक गेंद वहां पर फील्ड होती, अलेने के हाथों तोड़ करके रन पूरे किए 106 दो विकेट के नुकसान पर. तो अब सिर्फ 20 रन बचे हैं, 20 रन और बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को. और जाहिर है कि जब आप इतने विकेट्स लेकर के 20 रन आपको बनाने हैं और सिर्फ 12वां ओवर चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है उस स्थिति में अब कोई शायद चमत्कार ही वेस्ट इंडीज को वापस ला सकता है 106 पर. तो गार्टनर 23, मूनी 55 और ओवल का मैदान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. फील्ड में थोड़ा सा तब्दीलियां की जा रही हैं, खासतौर पर जो ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट है उसमें ड्राइव किया था, हाफ बॉली का ड्राइव था और एक रन दौड़ करके पूरा किया. दूसरे रन के लिए स्टार्ट लेना चाहती थी लेकिन कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, वो 19 रन बाकी हैं, 52 गेंदें बाकी हैं. मुनी अर्धशतक अपना पूरा कर चुकी हैं. अगर आप मुनी का करियर का अर्धशतक देखें तो एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाए और इस बार अच्छा ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव. यहां पर रन मिलेगा सिर्फ एक लौता क्योंकि हेनरी वहां मौजूद और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108. दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा. भारत साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त खाया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे पराजित किया था और इन दो पराजय की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया. बल्ले के निचले हिस्से से लगा लेकिन रन जरूर मिलेंगे. यहां पर एक रन की गुंजाइश थी लेकिन इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे किए. वो आक्रामकता जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स में होनी चाहिए फिलहाल नदारद दिखती है क्योंकि ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर वो ये मान चुके हैं कि यह मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है. थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है इस समय यूरोप में, आप लगातार इन खबरों को सुन भी रहे होंगे तो उसका असर यहां स्टेडियम में मौजूद दर्शकों पर भी देखने को मिल रहा है.
0: सर्टेनली यूरोप गोइंग थ्रू अ टफ समर दिस सीजन. 41.5 डिग्रीज एल्सवेयर. And the score now reaches Nelson at 111 with that single just tucked away on the onside. And Glasgow, the fielder. And Ram Harrod giving away 6 runs of 5 deliveries. A better over from her, comparatively. But now Australia, just a question of time, winning this match. Here's the next delivery from Ram Harrod. Plays it onto the onside. Just pushes that onto the onside to pick up a couple of runs to end the over. 12 overs gone, a single rather, not the second run. 112 for the loss of 2 wickets after 12 overs.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी

0: back home tomorrow, and Australia will get comfortably into the finals. As here is Henry bowling the fifth delivery, and this is outside the leg stump, played it onto the onside. The fielder will come and pack up that one, pick it up nicely, and one more run of the scorecard. So the score reads 123 for the loss of two wickets. One more delivery to complete over number 13, and this over has seen two leg byes, one no ball, and one more delivery to complete the 13th over. He's still waiting for the last delivery to be bowled. If that's a boundary, then this should be curtains for West Indies. They brought all the fielders close as possible, almost all in the 30-yard circle, because there is no use now defending the fence as Henry comes and bowls this one. And that ball has been played onto the onside to the square leg region, across the fence. And that's 127. That's a target of 126 overall by one extra run there. So Australia wins this match by 8 wickets and...
1: ये लगा आभा का चौका।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So what a great victory for the Australian side. 127 for 2. And Sanjay, if you look at the main reasons why the West Indies, the short selection, playing too far across the line, giving those dot deliveries, that prompted the Australian side to do well as far as bowling and fielding is concerned, and look at the result now.
5: बिल्कुल, एक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फेवर में ये था कि उन्होंने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उन्होंने जिस तरह से डॉट बॉल्स डाली और लगातार किफायत बरती, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस था। वो प्रेशर जब वेस्ट इंडियन बैटर्स के ऊपर आया तो उसके बाद वो चरमरा गई पूरी की पूरी टीम, और जाहिर है कि उसके बाद वो एक बड़ा लक्ष्य नहीं दे सके जो हमने देखा। और आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार जीत दर्ज करके सीधे फाइनल में जगह बना ली है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
6: प्लेयर ऑफ द मैच।

0: And with that, Australia have gone on to win the first semi-final match that was held against West Indies in mere 13 overs, chasing a target of 125. They needed 126 to win, and the Australians made it look like a cakewalk because they were able to chase the target within 13 overs. I'm Sakshi Mandwal, welcoming all you listeners to our show Player of the Match for the ongoing ICC Presents Women's T20 World Cup. Joining me over here is my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. तो जहाँ तक World Cup Finals की बात है, वहाँ पर एक टीम तो तय हो गई, Australia. आज बहुत ही dominant जीत, Australia ने 8 विकेटों से West Indies को हरा दिया है. और चर्चा करने के लिए यहाँ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं आशा रावत, former इंडिया क्रिकेटर. नमस्कार. राकेश राव, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग. और साथ ही रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, BCCI कोच. तो आशा जी, बधाई दे दें ऑस्ट्रेलिया को.
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से मैं कह ही रही थी कि अगर इस मैच को वेस्ट इंडीज को जीतना है तो जो दो तीन प्लेयर हेली मैथ्यूज, डॉटिन, इनको स्टेफनी टेलर, इनको स्कोर करना चाहिए था. तो स्कोर होता तो जो मैच जो था वो कुछ फाइट के लिए जाता, तो स्कोर नहीं था इतना. फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला, मैंने जो बात करी थी कि वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर बैटिंग कर रहे थे वो क्रॉस खेल रहे थे ज़्यादा, मतलब बॉल के पिच में भी नहीं आ रहे थे. वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें, चाहे गार्डनर को देखें, चाहे बेंट मॉनी को देखें, तो वो ना बॉल के ऊपर चढ़ के बॉल, मतलब अगर वो स्टेप आउट भी करते तो बॉल क्रॉस नहीं खेला उन्होंने कोई भी शॉट. कवर्स ड्राइव खेले उन्होंने, तो स्ट्रेट खेला, मतलब वी शेप में उन्होंने

0: शॉर्ट्स के लिए.
1: राइट. एंड बेथ मूनी, सिंस यू स्पोक अबाउट हर, पुट अप एन एक्सेप्शनल नॉक टुडे. 36 बॉल 61 रन्स व्हिच इंक्लूडेड 8 फोर्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 170, 169.44 टू बी प्रिसाइज. राकेश, आई विल कम टू यू. वेल, West Indies were able to get one quick wicket early on, 29 for the loss of the first wicket, but 125 we all knew were never going to be enough for West Indies to turn the tide in their favour.
2: Absolutely, because there was no pressure from the scoreboard, and when you don't have that thing first up, I mean, anything like 150, 160 would have been, because if you're looking to give your spinners a chance, you should have runs on the board. And here, of course, they just raced away with it. Like, they were averaging almost 10 runs an over. Like, 13 would mean that they were almost 10 runs an over. So, that's the kind of team that you have to, you know, I mean, the kind of performance that you have to give. If you are up against a weaker opposition, it's not just that you go and win. You score an emphatic win. You have to tell that other team, there's a difference between us.
3: Gee.
2: And the difference was reflected in that with 8 wickets and 7 overs to spare.
3: आप तीनों से ही एक सवाल, रविंदर जी, आज प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा?
4: मुनी,
1: बेथ मुनी.
4: मुझे लग रहा है कि वही बैटिंग है, बॉलिंग में तो ज्यादा दो, उसमें उन्होंने 61 रन बनाए 36 जो उसमें बॉलों में. मुझे लगता है मुनी कोई चांसेस लग रहा है.
3: और कोई दावेदार है?
2: अब इन्होंने मुनी कह दिया है, व्हिच इज ऑब्वियस मुझे लग रहा है, बट मैं कहता हूं एश गार्डनर हो सकती है, क्योंकि 2 विकेट लिया है और नॉट आउट रही है, और लास्ट में जो भी उन्होंने 35 रन बनाए हैं.
3: अब आशा तय करेंगी.
0: मुझे संकट में डालती है.
3: आप कोई तीसरा दावेदार भी लाइए.
0: नहीं, तीसरा दावेदार वैसे है नहीं, उन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगा. तो मुझे जहां तक लगता है, जिसने 50, बेथ मुनी ने 50 करा है, तो
3: और विकेट कीपिंग भी तो की है. कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि 20 ओवर उसने कीपिंग भी तो की है.
0: हाँ, करी तो है, सही बात बोली है आपने. तो इसी डाउट में मैं बेथ मुनी को बोलती हूँ.
1: राइट, ओके. क्योंकि द गेम टुडे इज ओवर ऑब्वियसली, बट अब ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में जा रही है. क्या आपको ऐसा लग रहा है, आशा, कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस वक्त अपने खेलने के अंदाज से एक इनविंसिबल टीम लग रही है, जिसको शायद कोई भी ना हरा पाए अब?
0: नहीं, मैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फाइनल में पहुंची है, बट आप इंग्लैंड को भी कम,
1: या फिर साउथ अफ्रीका.
0: हाँ, अभी तो चलिए, हाँ, वो तो गेम अभी बचा है, वो तो डिसाइड करेगा, 2 तारीख को ही करेगा. पर ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से आज का भी मैच उन्होंने जो खेला है, तो उनकी जो सारे, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटिंग है, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा है, सबने दिया है. बॉलिंग में भी देखिए आप, या फील्डिंग में भी देखिए, हाँ, एक दो कैचेस उनसे भी छूटी हैं, बट ये है कि उनकी जो साइड है वो एक, अगर आप वेल, मैं एक बिल्कुल, मतलब पैक्ड है, कि बैटिंग भी है उनके पास, ऑलराउंडर भी है उनके पास बॉलर भी अच्छे हैं. तो जैसे बेथ मुनी, और इवन सब फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे अगर आप बेथ मुनी की बात करें, या एश गार्डनर की बात करें, या पैरी की बात करें, तो सारे अच्छा कर रहे हैं. किम ग्राथ है जो बॉलर हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है.
1: राकेश, योर टेक ऑन इट, दैट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलियंस लुक इनविंसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम?
2: Yes, but they are yet to play the home team. And where you have conditions which are a little alien to you, but of course, this is a very, very seasoned team.
1: Yes, but for now, I'll have to just pause you, because we'll take you straight to the post-match.
5: Be our toughest opponent. But yeah, the quick turnaround, we knew that it was always going to be a really nice wicket, and we were in London, thankfully. So yeah, just a short travel, but yeah, really pleasing to get the win.
6: Great spell of bowling from you today, picking up the wickets of Claxton and Taylor to restrict the middle overs.
5: Yeah, I feel like I haven't really had an impact with the ball throughout the tournament, so I guess to save my best till now is always pleasing. I felt like, yeah, I've just probably been pretty inconsistent, where today it was kind of working, just making sure that I was hitting the stumps as often as possible, and then ultimately being able to get a couple of scalps is always nice as well.
6: 6 wickets to the spinners today in a great tournament so far as well. What are the conversations pre-game amongst the spin attack?
5: Well, we knew that this wicket was probably going to be a good one, but it actually was quite inconsistent at times with the bounce, so making sure that we kept the stumps in play for as long as possible. It's one of our measures, and I guess dots and ones as well is really important too, I guess, against a team like this that we know want to hit boundaries, so making sure that, you know, dots and ones are a win as well, so making sure that they're our key markers that we're hitting, and I felt like we did that today.
6: Bit of a slow start for you with the bat in this World Cup, but a couple of really good scores recently and a partnerships from you. What's been the turnaround in that form?
5: I would love to have an answer for that, but I really don't know. I just feel like confidence is a big one for me with bat in hand, and I guess it's given myself a chance. I feel like when I've thrown, I guess, my

0: to those two, and I thought we bowled really well. Hayley and Joseph actually tried to go, but I thought we held our nerve, which was really cool.
1: Any changes to approach when you're chasing 125 on a good wicket?
0: No, I think we all wanted to sort of get it done as quick as possible, and Moons and Ash were clinical and volley to get us away, just to calm the nerves in the change room. It was really good to see.
1: I can remember down in Southampton, Beth Mooney took herself off and retired herself hurt with the stiff back as a precaution. We saw Elise Perry leave today as well. Is it the same kind of scenario?
0: Yeah, a bit of that again. I think it's just some quad awareness, but it sounds like she'll be more than okay to go on Sunday.
1: Well, three play of the matches and 35. She's allowed a little bit of time off, isn't she? You've got 5 days now until the final. What are the plans?
0: Sleep. I'm looking forward to a good night's sleep tonight. But, we'll make sure that we celebrate what's been a pretty cool 2 weeks for the group. We'll make sure we do that. Rest and recover over the next little bit, and then build up without thinking too much and playing the game over and over in our heads. I think we're just going to make the most of the week and make sure we enjoy every part of it.
1: Yep. We've deserved the rest and the sleep. Enjoy the sleep and switch the alarm off, and we'll see you on Sunday.
0: Thanks, James.
1: Well done.
2: Well, there you had it. A very happy and a very smiling Australian captain out there, Sophie Molyneux, who was all about just complimenting and applauding the team's efforts. And also for all our listeners, I would like to quickly tell you that this is indeed the 8th T20 World Cup final for the Australian women's team. That in itself is a very big achievement. And I'm also told that we have a caller with us joining us right now. Namaskar, good evening.
3: Namaskar, ma'am.
2: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो पर. बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप आज.
3: मैम, मेरा एक तो ये सवाल है, क्यों ऑस्ट्रेलिया बार बार इंडिया को ऐसे मैच में हरा देता है? और दूसरा ये, अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान फाइनल होगा, क्या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है क्या? और मुझे ये भी बता दीजिए, सॉरी फॉर दैट, कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज होगी उसमें कमेंट्री होगी या नहीं?
2: जी, आपको बता देंगे. चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, रवि आप ही के पास आते हैं, कि भारत क्यों हर बार ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है? कहाँ पर हमारी कमियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया उसका फायदा उठा लेता है?
4: देखिए, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है. आपको सामने सबसे बड़ी फिटनेस देखिए इनकी, आप ऑस्ट्रेलियन टीम की फिटनेस और इंडियन टीम की फिटनेस पे आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा. उनकी फील्डिंग देखिए, अपनी फील्डिंग देखिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको. हमारे यहाँ पे जब वो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका का, चार प्लेयर भारत और राधा यादव तो फील्डिंग करने आई थी, उसके ऊपर इतनी बड़ी बैंडेज लगा रखी है, चोट लगी थी उनको, तब भी वो फील्डिंग करने आई रही थी. बाकी तीनों प्लेयर्स को मैनेजमेंट ने ये नहीं समझा कि वो फील्डिंग के लायक भी है कि नहीं है. तो ये देखिए, आप बॉटिंग बॉलिंग सब करते हैं, फील्डिंग सबसे बड़ा पार्ट है. जब तक आप फील्डिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ग्राउंड में अपना पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता. सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने आप ग्राउंड में नहीं आते, आपको महीने महीने की फिटनेस कैंप चाहिए होते हैं. और जिस दिन इंडियन टीम, चाहे कोई इंडियन टीम, फील्डिंग पर ध्यान देगी, उस दिन इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइट जीतेगी और सब टीम.
5: इंडियन टीम की पूर्व सदस्य से पूछ लेते हैं, फिटनेस पर कितना ध्यान देते थे आप?
6: हमारे टाइम में तो T20 होता ही नहीं था ना, तो फिटनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता. सर ने सही बोला कि T20 की वजह, बल्कि जब से T20 आया तो मुझे लगता है फिटनेस में तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो पर ध्यान नहीं दिया जाता. फील्डिंग में मतलब आप निग्लेक्ट करते हैं फील्डिंग को, तो
5: नहीं, भले ODI टेस्ट हो, फील्डिंग एक प्रायोरिटी थी तब?
6: नहीं थी.
5: आज है,
6: आज T20 है, तो मेरे साइड अगर मैं कोच होती तो मैं देती, मैं उसको पहले लेती जिसकी फील्डिंग अच्छी है, जो फिट है. सर ने बिल्कुल सही बोला, अगर आप सिंगल डबल नहीं भाग पाएंगे, अगर आप फिट नहीं है तो कैसे लेंगे? अब आप देखिए, कैच बनानी पड़ती है, कैच कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको कैच बनाना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एफर्ट्स मानना पड़ेगा. तो एफर्ट तभी मानेंगे ना जब आप फिट है. T20 इतना फास्ट गेम होता है ना, उसमें आपका माइंड नहीं चलता इतना. बट अगर आप फिट है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लगना है, कहाँ पे बॉल आ रही है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है.
5: तो कोच साहब से पूछते हैं, सर ये कैच आते आते झलक क्यों जाती है हाथ से?
4: देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि झलक जाती है, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे फील्डर्स को भी कैच छूट सकती है. अच्छा, ऐसी बात नहीं है. लेकिन आप ये देखिए, आप कितना टाइम आप कैचेस लेते हैं. आप जो अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं, मैं देख उनको सुना, मैंने पढ़ा भी, देखा भी है, वो 500-500, 300-400 कैचेस डेली पकड़ रहे हैं. उनको हाथ में ऐसा लगता है कि बॉल उनके हाथ में ही, उनके साथ ही चिपक जाती है. तो ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने की बात है.
5: हमने देखा है इंडिया में, हम लोग ऐसे हाथ करके कैच लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे हथेली खोलकर सूरज की तरफ, तो फर्क क्या है दोनों में?
7: फर्क दोनों का आपका ट्रेनिंग मेथड ही वही है कि रिवर्स कप जैसे आप लेते हैं, ऑस्ट्रेलियंस लेते हैं, उनकी आदत है, उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है. ये नहीं कि

0: उसमें कुछ कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज है ऐसा नहीं है, बट फर्क ये है कि उसमें आपका पाम पहले आता है, फिंगर्स बाद में आती हैं, आप इम्पैक्ट लेते हैं पाम के ऊपर पहले। हमारे इसमें क्या होता है कि हम फिंगर में इंजरी होने का हमारा चांस ज़्यादा होता है क्योंकि हाथ आपका खुल जाता है, उनका जो है कप में उनका उनकी उंगलियाँ जुड़ी रहती हैं पहले, जो थंब है वो दोनों जुड़े हुए हैं उनके, हमारे दोनों थंब अलग अलग जगह हैं कम्प्लीटली, तो ये एक फर्क आ जाता है उसमें, इसलिए आपका जो इम्पैक्ट होता है वो उनकी आदत है। और अगर आप वही चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है और हमारा वाला सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको जैसे ट्रेन किया जाता है वो उसी हिसाब से चलता है। right. दूसरी चीज ये कि फील्डिंग का जो एस्पेक्ट है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा फील्डिंग के ऊपर वो जितना दम होना चाहिए था, मेंस क्रिकेट में भी बहुत रिसेंट है, हमारे कुछ फील्डर्स को हमें छुपाना पड़ता था एक जमाने में, हम लोग बोला करते थे 11 में 11 फील्डर्स नहीं है हमारे। मदन लाल मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छे होते थे, मैं 60s लेट 60s की बात कर रहा हूँ या 70s की बात करूँ, आबिद अली कहम कुसोलकर, इन लोगों के हम नाम ले सकते थे, बाकियों के नाम नहीं ले रहे हम लोग, स्लिप फील्डर्स को हम गिनते ही नहीं थे कि चलो भाई आ जाएगा ले लेंगे, आउटफील्ड में नहीं होते थे हमारे पास फील्डर, और खासकर वो एम्फेसिस भी नहीं था। इन्होंने अभी कहा कि 400 कैचेस लेते हैं, अजहरुद्दीन का जमाना ले लेते हैं 90s का, जबकि वो 200 कैचेस वो लेते थे 100 सुबह 100 शाम को, वो एक ही इंसान होता था जो दो बार नेट्स के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए कमरे से बाहर निकलता था, एंड ही वांटेड ऑल दोस कैचेस, और हमें याद नहीं पड़ता कि अजहरुद्दीन ने कोई कैच छोड़ा हो, कपिल देव ने कोई कैच छोड़ा हो, मतलब ऐसे थे, इनकी ट्रेनिंग मेथड अलग होते थे। लेकिन हाँ, आजकल तो बहुत स्पेशलाइज्ड है, आपका ट्रेनिंग मेथड्स बदल गए हैं, मैच सिचुएशन में भी आपको रख के कैच प्रैक्टिस होती है, तो विमेंस क्रिकेट में तो हमें बहुत दूर जाना है, अभी बहुत वक्त लगेगा।
1: ओके राकेश, आई विल जस्ट टेक अ पॉइंट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट वी यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ कोर्स, बट इन रियल टाइम इफ यू लुक टुडे द गेम दैट वी जस्ट सॉ, हाउ डू यू असेस वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट नाउ, बिकॉज सी दिस टीम हैज लॉस्ट 7 में से 6 सेमीफाइनल मैचेस इन द रीसेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, एक ही जीते थे 2016 का एडिशन, what does it speak of the West Indies cricket now?
0: See, West Indies cricket is undergoing a transition for far too long, because if you go to West Indies now, it's no longer that the poor guys are taking the game, they are only playing T20 cricket at best, that's why their test team has been hit for a 6. White ball cricket is dying there because people are no longer interested in the game like they used to be, because they're not winning those big ones, so their cricket is suffering, women's cricket is also suffering, and they've been a cash trapped, you know, association doesn't have that kind of money. The sponsors, when they come to India, the Indian companies sponsor them, they don't come here with a sponsor, they come here and then they get sponsorship, so a lot of issues there, lack of interest. Women's cricket is also not too far from where the men are.
2: Ji, is samay ek aur caller hai phone line par.
3: Hello,
2: namaskar ji.
3: Ji namaskar, sir, khairiyat hai?
2: जी बिल्कुल खैरियत है, आप अपना नाम बताइए।
3: ये सर मेरा नाम मोहम्मद हमरान बेग है, मैं अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश।
2: क्या सवाल है आपका?
3: ये सर मेरा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, ऐसी क्या खुसूसियत उनके अंदर खासियत है जिसकी वजह से जो बाकी टीमों में नहीं है कि बड़े मोर्चे में वो आगे निकल जाते हैं बाकी टीमें पीछे रह जाती हैं? खासतौर से मैं अपनी इंडियन टीम के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो सुविधाएं भी ज्यादा है, खिलाड़ी भी ज्यादा, उसके बावजूद क्या कमी रह जाती है आखिर?
2: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आशा, जिस तरह से हमने 2025 में ODI वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन टीम एक अच्छे हाई पर आ रही थी, आप कैसे देखते हैं इंडियन टीम का कैंपेन यहाँ पर और फिर ऑस्ट्रेलिया से हार के वो नॉकआउट से बाहर हुई?
4: इंडियन टीम जैसे
1: आई टेक द क्वेश्चन, मैं रवि के पास आ जाती हूँ। रवि, अगर हम बात करें कि भारतीय महिलाओं की टीम जिस तरह से हम हारे इस सीजन भी, अगर देखें साउथ अफ्रीका से भी हार गए जहाँ से हमें लग रहा था कि अब हमारा सेमीफाइनल का सफर खत्म है, ऑस्ट्रेलिया से तो हार ही गए हम, क्या कमियाँ आपको दिखती हैं प्रेजेंट भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर जिसकी वजह से जो बड़ी टीमें हैं, दिग्गज देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये हमें आसानी से हरा देते हैं?
5: देखिए, अफ्रीका के इस मैच में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने था, हम मैच जीत रहे थे और हम किस कारण से हारे सबको पता है, कैसे 3 कैचें छोड़ी गई उस समय। मैंने आपको पहले बोला फील्डिंग, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपके पास अच्छे बैटर्स हैं, नो डाउट बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, आप लैक करते हैं सिर्फ फील्डिंग में। जिस दिन इंडिया का फील्डिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, जिस दिन इंडिया ने फील्डिंग अपनी इंप्रूव कर ली और ये स्टार्स जो कल्चर है इसको दूर कर लिया, तो आप उसी लेवल पे खड़े होंगे जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खड़े
2: हैं। पर आपको लगता है आशा एक अच्छी बात कैंपेन की रही कि शेफाली जिनको हम बैटिंग के लिए जानते हैं इस बार वो बॉलिंग कर रही हैं, ओपन भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने।
4: हाँ, मतलब ये है कि जो इंडियन टीम है हमारी, अगर मैं पहले

0: मुताबिक बोलूँ तो बहुत फर्क आया है, चाहे उनकी फील्डिंग में, मैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जैसे देखती आई, पहले जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था बहुत नीचे था, बट अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड हो गया। बट बात वही है, स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है पर औरों को हमसे और अच्छा हो गया है। तो मतलब हमें, जैसे अभी सर ने एक बात बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी, कि जैसे कैचिंग, अगर आप फील्डिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप 50-50 या 200-200 कैचेस करनी चाहिए। जैसे हम बैटिंग करते हैं ना, तो बैटिंग में हम वो नॉक करते रहते हैं, हम 200-200 बॉल खेलते हैं तभी हमारे वो बैटिंग स्ट्रोक इंप्रूव होता है। तो वैसी फील्डिंग के लिए भी वही बात है, पर वो चीज कोई करता नहीं है ना, कोचिज, मेरे ख्याल से कोचिज भी इतना नहीं करवाते हैं।
1: जी बिल्कुल। और अगर अब हम यहाँ से देखें तो दो ही साइड्स हैं जो अनबीटन है अब तक। ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीती, आज भी 6। उधर इंग्लैंड, आपको लगता है क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला हो रहा है तो इंग्लैंड अब यहाँ पर एक फेवरेट है कि सेमीफाइनल्स में?

0: तो इंग्लैंड अब यहाँ पर एक फेवरेट है कि सेमीफाइनल्स में, क्या उम्मीद करें सेकंड सेमीफाइनल्स में?
1: फेवरेट नहीं कहूंगा मैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि उनके चांसेस आपको कम आंकने नहीं चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को मैं रनअवे फेवरेट्स नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जहाँ कंडीशंस में ज़्यादा खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड के पास रहेगा, तो वो एडवांटेज आप उनसे ले नहीं सकते। हाँ, उस दिन क्या होता है वो अपनी जगह है। इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा, तो इंग्लैंड के चांसेस काफ़ी ब्राइट होंगे, जो और किसी टीम के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। न्यूजीलैंड और यू नो साउथ अफ्रीका, इंडिया, किसी भी टीम से अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच आप कहेंगे साहब कल होने वाला है, तो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है, नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड।
2: ओके, रवि आपके पास आती हूँ। चलिए, ये बात तो सही है काफ़ी हद तक कि इंग्लैंड के पास होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ साथ सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला, उसमें माइंडसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ अफ्रीका क्या आपको लगता है किस तरीके का माइंडसेट आम तौर पर दिखाती है? क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड के मुकाबले में ये अपनी चोकिंग जो मेंटालिटी है उसको ओवरकम कर पाएंगी?
3: देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को हल्के भी लेना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका की टीम बहुत ही फाइटर टीम है, और अभी उनकी कैप्टन मुझे उसको अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही। अगर वो लॉरा उस समय अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा मैच का दामदार है, देखिए 20 ओवर का मैच कोई बड़ा मैच नहीं होता, दो प्लेयर खड़े हो जाते हैं तो मैच बराबर कर देते हैं। और अगर यही लॉरा उस दिन अच्छी तरह, लॉरा जब बैटिंग करती है तो वो सीधा 80-100 से लंबे स्कोर बनाती है, तो ये मैच एक अच्छा मैच होने वाला। एडवांटेज है नो डाउट, होम एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन होम एडवांटेज में भी बहुत, घर में भी बहुत टीमें हारती हैं। इसके ऊपर
0: साउथ अफ्रीका में कप्तान लॉरा वुलवा तो है ही, लेकिन भारत के मुकाबले में हमने देखा मैरिसन कैप ने नीचे आके बड़ा अच्छा खेला, तो आपको लगता है कि इनके पास अच्छे बैटर्स बॉलर्स हैं?
4: अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम को देखूंगी तो वो भी बैलेंस टीम है, और ऐसे नहीं कह सकते कि इंग्लैंड मतलब होम टीम है तो वही जीतेगी। सब जो बात होती है एक स्टेज में एक मेंटल जो अपने माइंडसेट को, माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर दे, प्रेशर को कंट्रोल कर दे, तो वो भी मतलब मैच निकाल देता है। अभी जैसे आज मैच हुआ ना, तो वेस्ट इंडीज क्या मुझे लगता है वो उनको प्रेशर हावी हो गया, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे, सारे एक ही जैसे बैटिंग कर रहे थे, कोई कुछ किसी ने मतलब सिंपल क्रिकेट की भी खेलता ना कोई तो मुझे लगता फिर भी कुछ होता, सब क्रॉस, उनको लगा T20 है बस। तो उस हिसाब से अगर जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा ना वो मैच निकाल लेगा।
2: ओके, क्विक प्रेडिक्शन फ्रॉम ऑल आवर थ्री पैनलिस्ट, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कि वो सेमीफाइनल कौन जीतने वाला है? रवि आपसे शुरू,
3: एडवांटेज इंग्लैंड का, नो
2: डाउट
5: एडवांटेज इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनल खेलेगी, तो ऑब्वियसली मैं साउथ अफ्रीका से उनको अच्छी मानता हूँ। साउथ अफ्रीका का अटैक अच्छा है, हम लोग सिर्फ वुमेन जब बात करते हैं बैटिंग बैटिंग बैटिंग बैटिंग देखते हैं, ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अटैक बेटर है काफी टीमों से, और वो टीम इंडिया को हराने के बाद इस स्टेज पे पहुंची है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके साथ जरूर है। अगर उनको ये सेल्फ बिलीफ है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है अंदर, तो जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता है।
2: और आशा,
4: मैंने बोला ना जो प्रेशर को हैंडल कर देगा ना उस दिन वो जीतेगा,
2: क्योंकि टीम दोनों में नहीं दे रहे हो,
4: नहीं दूंगा
0: जी। लेकिन क्रिकेट की जब बात होती है तो जो सुर्खियां बन रही हैं वो, चाहे वुमेन क्रिकेट हो मेन क्रिकेट, बेन स्टोक्स इतने बड़े खिलाड़ी और एकाएक उनका डिसीजन आना, आप कैसे देखते हैं? एक अपना ही एरा था बेन स्टोक्स का।
5: बेन स्टोक्स को याद किया जाएगा उनको एज एन ऑलराउंडर, यस, फॉर बीइंग टेम्परामेंटल एट टाइम्स, नॉट गोइंग बाय द बुक ऑल द टाइम, और जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनका नॉक था, जैसे न्यूजीलैंड से ऑलमोस्ट उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच ले लिया, और ऑफ कोर्स अजीबोगरीब चीज़ें हुई उस फाइनल में 2019, बट ओवरऑल आई स्टिल फील दैट बेन स्टोक्स विल बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स फ्रॉम इंग्लैंड।
0: और इंग्लैंड सीरीज कल से शुरू हो रही है पुरुषों में, वहाँ पे एनी प्रेडिक्शंस?
5: Predictions, I think Indians will have to work very hard to win.
0: Especially after defeat with Ireland.
5: No, they won't let that happen because the conditions are different. Yes. But very challenging test for India.
0: बिल्कुल, लेकिन हम श्रेयस अय्यर जो नए कप्तान बने हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, और आपको एक बार याद दिला दें कि जो दूसरा सेमीफाइनल है वुमेन्स वर्ल्ड कप का वो परसों होगा 2 जुलाई को, और आकाशवाणी पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा हमारे विशेष कार्यक्रम और आंखों देखा हाल के लिए शाम 10:30 बजे। जी हाँ, पूरी रात अपनी है, 10:30 बजे विशेष कार्यक्रम और फिर आंखों देखा हाल। लेकिन फिलहाल पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव और रविंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच,
5: बहुत शुक्रिया।
2: And on that note, thank you to all our listeners for joining in. This is me, Sakshi Mandwal, and Amit Arora saying goodbye, but also giving a heartfelt thank you to our technical team, Jairam, Aniruddha Gupta, Nagendra Kumar, Pat.

0: टल, प्रसून कुमार, आ प्रोडक्शन टीम स्वाति कपूर, तन्मय भट्ट, विद्वान वास एंड आ प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, द टीम, द पीपल, द मेन एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हु ब्रिंग यू द शोज बैक टू बैक एंड ऑल्सो द कॉमेंट्री. थैंक यू सो मच टू ऑल आर लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज अमित अरोरा एंड साक्षी मांडवाल सेइंग गुड नाइट, गुड बाय.
1: Player of the match. अभी आप ICC Women's T20 World Cup 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
2: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज of the ICC Women's T20 World Cup 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
3: Akashvani, ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026-il Londonile Ovalil vechu ഓസ്ട്രേലിയയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിൽ നടന്ന ഒന്നാം സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണമാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത്.